एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 24वीं तिथि तदनुसार 15 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसार

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मत्स्य व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले

0: 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Subhadra Ramachandran. India-UK
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि धन या वैभव नहीं, बल्कि ऐसे रिश्ते हैं जिनमें अपनापन, सम्मान और विश्वास बना रहे। जिस घर में माता पिता की सेवा को सौभाग्य समझा जाए, भाई बहनों के बीच प्रेम बना रहे, अतिथियों का सत्कार स्वागत मुस्कान से हो और हर मन में एक दूसरे के लिए सद्भाव बसता हो, वहां सुख अपने आप आकर ठहर जाता है। ईश्वर से मांगने योग्य सबसे बड़ा वरदान भी यही है कि हमारे विचार पवित्र हो, व्यवहार मधुर हो और हम हर कर्म में सेवा के भाव को निहित रखें। जब मन प्रेम से भर जाता है तब पूजा केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन का हर क्षण हर धड़कन ईश्वर को समर्पित हो जाती है। चिंतन के बाद लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भगवान शिव के चरणों में झुकने वाला मन अहंकार से मुक्त होकर विनम्रता का मार्ग अपनाता है। शिव का नाम केवल मंत्र नहीं बल्कि आत्मबल, शांति और कल्याण का ऐसा स्रोत है जो हर हृदय को उजाला देता है।

माँ दुर्गा की कृपा जहाँ बरसती है वहाँ भय नहीं विश्वास जन्म लेता है। उनके चरणों में झुका हुआ मन शक्ति साहस और अटूट आस्था से भर उठता है।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की ये थी अंतिम भक्ति प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरित मानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान।

भरत को अयोध्या के राजपथ के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्यावासी स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति कटु वचन भी बोल रहे हैं। सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे? क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे? क्या राम, लक्ष्मण, सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा?

अभी आपने सुना मानस गान का भाग 148। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारी केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सात 7:10 पर आप सुना करते हैं रोजाना कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग आप सुनेंगे। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। गाने सुहाने फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 8:30 पर। 9:00 कार्यक्रम गीतांजलि सुनेंगे आप। आज का ये कार्यक्रम आपकी ईमेल्स और फेसबुक पर आए आपके मैसेजेस पर आधारित रहेगा और इसमें हम श्रोताओं की कुछ फरमाइशें भी पूरी करेंगे जो उन्होंने हमें ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भेजी हैं। 9:20 पर इसी दौरान आप प्रादेशिक समाचार सुन सकते हैं आकाशवाणी शिमला से। 10:00 तक गीतांजलि कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। 10:00 गीतों का कारवां ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हम होंगे। 10:30 पर हिमाचली लोकगीत आप सुन पाएंगे। कार्यक्रम होगा पहाड़ों के सुर। 11:00 आकाशवाणी शिमला से एक बार फिर सुने जा सकते हैं प्रादेशिक समाचार। 11:05 पर आज कुछ कव्वालियां सुनवाई जाएंगी। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा 11:30 पर। दोपहर 12:00 का समय रहेगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए के प्रसारण का। पर बहने अपना कार्यक्रम सुनेंगी सुनो सखी। 1:00 समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 1:10 से लुत्फ उठाइएगा विविध भारती के कार्यक्रमों का जिन्हें आकाशवाणी मुंबई से रिले किया जाएगा। इसी दौरान दोपहर 3:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। शाम 5:00 तक आकाशवाणी मुंबई के साथ आप बने रहेंगे जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 5:10 पर आज कुछ गैर फिल्मी भजन सुनवाए जाएंगे। युवा साथी कार्यक्रम में युवा मंच सुनेंगे। शाम 5:30 पर आज बात होगी स्पोर्ट्स बीट्स के बारे में। 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 6:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरमई सांझ मौजा गराइंदिया। 6:30 पर ये कार्यक्रम श्रोता सुन सकते हैं। 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 7:10 का समय रहेगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी के प्रसारण का। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 8:00 मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस इसका आनंद आप ले सकते हैं। 8:15 पर आज भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण आप सुन सकते हैं जिसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 8:30 पर देशभक्ति गीत सुनिएगा। रात 8:45 पर समाचार संध्या 9:00 न्यूज़ @9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए

रात 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज गीतकार क्रम में SH बिहारी के स्वरबद्ध किए कुछ गीत सुनवाए जाएंगे। 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। रात 10:00 उपशास्त्रीय संगीत प्रसारित किया जाएगा। 10:30 पर लुत्फ उठाएगा पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। सभा के अंत में समाचार आप सुन सकते हैं। रात 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में पहले संस्कृत में समाचार 7:00, हिंदी में समाचार 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: उड़ीसा राज्ययोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना प्रकटिता। ऋतुवैज्ञानिकैः इदमपि संसूचितं यत् ईदृश्येव संकट स्थितिः उत्तरपूर्व भारते छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल राज्येषु च श्वः यावत् अश्रान्तं प्रवर्तयिष्यते। पुरुषोनाम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ त्रिस्पर्धानां श्रृंखलायाः प्रथमे द्वन्द्वे बर्मिंघम नगरस्य एस्बेस्टन क्रीडांगणे भारतेन इंग्लैंड दलं 6-2 पराजितम्। अक्षर पटेलः स्वस्य उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, इसे दोहरा अंशदान समझौता भी कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क लाइनों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: ये समझौता वैश्विक स्तर पर एकीकृत, सुगम और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर भी श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन यात्रा के बाद कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे। यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। श्री गोयल ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और रोजगार, आर्थिक तथा कृषि मंत्री डेविड क्लारिन वाल से मुलाकात कर भारत बेल्जियम के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, तार्किक और कार्यबल गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 GW क्षमता वाले 24 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 MW की संयुक्त क्षमता वाली 10 और इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से

0: सुबह सुहानी।
1: नमस्कार श्रोताओ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम सुबह सुहानी में। श्रोताओ, रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि साथ भी निभाती हैं। जी हाँ, और यही साथ निभाने हर रोज आ जाते हैं हम, और साथ ही साथ करते हैं आपका मनोरंजन ढेर सारी बातों के साथ। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त नीलम। आज भी लेकर आए हैं हम कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ काम की जानकारियां और कुछ सदाबहार गीत। तो सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार। श्रोताओ, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार बहुत प्रेरणादायक बात कही थी, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। यानी अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह तपना सीखिए। जी हाँ श्रोताओ, सफलता केवल सपने देखने से नहीं मिलती बल्कि उनके लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। अनुशासन, धैर्य और त्याग की आवश्यकता होती है। जैसे सूरज अपनी रोशनी देने से पहले स्वयं तपता है, वैसे ही जीवन में ऊंचाइयां पाने के लिए कठिन परिश्रम और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति संघर्ष से घबराता नहीं, वही एक दिन अपनी मेहनत की रोशनी से स्वयं भी चमकता है और दूसरों का मार्ग भी प्रकाशित करता है।

जी हाँ श्रोताओ, जीवन चलने का नाम है और चलते हमें रहना है, निरंतर निरंतर प्रयास करते रहना है। निरंतर प्रयास हमें सफलता के और करीब ले जाता है। हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब वक्त आज की तारीख से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां आप तक पहुंचाने का। बात आज के इतिहास की। सबसे पहले जानकारी आपके साथ साझा करते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाओं की। प्राचीन मिस्र के इतिहास को समझने में मदद करने वाले रोसेटा स्टोन की खोज आज ही के दिन यानी 15 जुलाई साल 1799 को नेपोलियन बोनापार्ट के मिस्र अभियान के दौरान हुई थी। साल 1916 को दुनिया की सबसे बड़ी विमानन कंपनियों में से एक बोइंग की शुरुआत हुई थी आज के दिन यानी 15 जुलाई के दिन। मुंबई की पहली मोटर बस सेवा 15 जुलाई साल 1926 को शुरू हुई थी। ये केवल मुंबई की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली आधिकारिक सिटी मोटर बस सेवा थी। ये बस अफगान चर्च यानी कोलाबा से क्रॉफर्ड मार्केट के बीच चलाई गई थी। इस यात्रा के लिए यात्रियों को उस समय मात्र 4 आना यानी 25 पैसे किराया देने होते थे। इंग्लैंड से मंगाई गई इस बस में 24 यात्रियों के बैठने और 2 यात्रियों के खड़े होने की जगह थी। बात करें साल 1955 की तो 15 जुलाई के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की थी। साल 1979 में मोरारजी देसाई ने भारत के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा आज ही के दिन दिया था। साल 2006 में आज ही के दिन ट्विटर, वर्तमान में जिसे एक्स के नाम से हम जानते हैं, इस जानी मानी सोशल मीडिया सेवा की शुरुआत हुई थी। और साल 2011 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV-C17 के जरिए GSAT-12A का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया था। बात उन खास हस्तियों की जो आज के दिन जन्मी। साल 1611 में जन्म हुआ आमेर के राजा और मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति जय सिंह का। साल 1880 में जन्मे शिक्षाविद, ग्रंथकार और सांख्यिकीविद अंग्रेज अधिकारी विलियम विल्सन हंटर। साल 1983 में आज ही के दिन जन्म हुआ प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी जमशेद जी जीजाभाई का। भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे के कामराज का जन्म आज के दिन यानी 15 जुलाई के दिन साल 1903 में हुआ। वे सुधारवादी नेता थे और तमिलनाडु के विकास के लिए उन्होंने काफी काम किए। उनके जन्मदिवस यानी 15 जुलाई को तमिलनाडु में शिक्षा विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है। कामराज को तमिलनाडु में शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम और मुफ्त शिक्षा शुरू करने के लिए शिक्षा का जनक यानी फादर ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। आज के दिन आंध्र प्रदेश की प्रथम महिला नेता दुर्गाबाई देशमुख का जन्म हुआ साल 1909 में। और साल 1912 में आज

के दिन जन्म भारतीय सेना के जांबाज अधिकारी मोहम्मद उस्मान, जिन्हें साल 1947 के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस के लिए नौशेरा का शेर भी कहा जाता है। आज विशेष के अंतर्गत और भी जानकारियां साझा करेंगे हम अपने श्रोताओं के साथ। फिलहाल वक्त श्रोताओं के मनोरंजन का।

0: सारा
1: नहीं
0: दीवाना
1: दीवाना नहीं अनजाना
2: हंड्रेड 3.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और आप सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम सुबह सुहानी। आज विशेष के अंतर्गत जानकारी हम साझा

कर रही हैं श्रोताओं, बात करते हैं उन खास हस्तियों की जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। एंटोन चेखव, ये एक महान रूसी लेखक और नाटककार थे जिन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन लघु कथाकारों में गिना जाता था। इनका निधन हुआ साल 1904 में। आज ही के दिन द चेरी ऑर्चर्ड उनकी प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। प्रसिद्ध जर्मन रसायन शास्त्री जिन्हें साल 1902 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था, एम एल फिशर, साल 1919 में इनका निधन हुआ। साल 1967 में निधन हुआ मराठी रंगमंच के महान नायक, गायक और अभिनेता बाल गंधर्व का। इनका असली नाम नारायण श्रीपाद हंसराज था और वे अपने दौर में महिला किरदारों को जीवंत करने के लिए मशहूर थे। भारतीय चिकित्सा विज्ञानी और परिवार नियोजन विशेषज्ञ बानो जहांगीर कोयाजी का निधन आज ही के दिन साल 2004 में हुआ और साल 2017 में 15 जुलाई के दिन इस दुनिया से अलविदा कहा। गणित की दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड्स मेडल पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानिका। तो श्रोताओं, ये थी 15 जुलाई की कुछ खास बातें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब लौटते हैं वहीं जहां सुर है, संगीत है। आपके लिए पेश ये प्यारा सा गीत है

कार्यक्रम सुबह सुहानी में एक बार सभी श्रोताओं का फिर स्वागत। श्रोताओं, कोई भी दिन यूं ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं बन जाता, उसके पीछे होती है एक वजह, एक जरूरत और बदलाव की एक उम्मीद। यही वजह है कि हर साल ये दिन हमें फिर से उस मुद्दे की याद दिलाते हैं और उस मुद्दे के प्रति जागरूक करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज कौन सा राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। श्रोताओं, सिर्फ डिग्री होना ही काफ़ी नहीं, आज की दुनिया में हुनर भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बदलते दौर में वही आगे बढ़ता है जो सीखना कभी नहीं छोड़ता। इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष आज के दिन यानी 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे व्यावहारिक और तकनीकी कौशलों से लैस करना है या उनके प्रति प्रेरित करना है जो उन्हें बेहतर रोजगार, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता की ओर ले जाएं। डिजिटल तकनीक, संचार, नवाचार और व्यावसायिक प्रशिक्षण आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत बन चुके हैं। ये दिवस याद दिलाता है कि जब युवाओं के हाथ में कौशल होता है तो उनके सपनों के साथ साथ देश के विकास को भी नई उड़ान मिलती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिवस इस बात पर जोर देता है कि कौशल विकास न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाता है बल्कि नवाचार, आत्मनिर्भरता और सतत विकास की मजबूत नींव भी रखता है। कार्यक्रम में वक्त एक बार फिर गीत संगीत का।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और अब बात आज की ताजा तरीन खबरों की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए अपना अभियान शुरू किया। सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कक्षा 9 और 10 में तीसरी भाषा के लिए आंतरिक मूल्यांकन अनिवार्य किया। एनआईए की विशेष अदालत ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। बात अब खेल खबरों की। क्रिकेट में भारत ने पहले एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। अक्षर पटेल को शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो स्पेन ने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। अब आज दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के मुकाबला होगा और इस मुकाबले में जो टीम विजय रहेगी वो टीम फाइनल में स्पेन से भिड़ेगी। मौसम पर नजर डालते हैं। देश के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज हल्की से भारी बारिश की संभावना है। कुछ राज्यों में गरज चमक और तेज हवाओं से लेकर मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा भी बना रह सकता है। धर्मशाला और उसके आसपास के इलाकों के मौसम की बात करें तो इसके आसपास क्षेत्रों और धर्मशाला में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान सामान्य रहने और मौसम सुहावना बने रहने का अनुमान है, लेकिन श्रोताओं को हम अपनी तरफ से एक अपील करना चाहेंगे। बरसात है और बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए घर से जब भी निकलें पूरे इंतजाम के साथ निकलें और जहां जिन क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने की संभावना रहती है उन क्षेत्रों से दूरी बनाकर रखें। और खबरों के बाद एक बार फिर वक्त है श्रोताओं के मनोरंजन का, तो लीजिए सुनिए ये गीत।

0: श्रोताओ, ये था आज का कार्यक्रम सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 7:40 हुए हैं। अब सुनिए हिमाचली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शुभ ब्याग।

श्रोताओ, देवभूमि हिमाचल जितनी समृद्ध इसकी संस्कृति है, उतने ही समृद्ध और रंग बिरंगे हैं यहाँ के लोकगीत। तो आइए इन्हीं मधुर सुरों का आनंद लेते हैं कार्यक्रम शुभ प्याग में, और शुरुआत करते हैं इस लोक भजन के साथ जिसे गाया है महेंद्रू राम और कश्मीरी राम तथा साथियों ने।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, हिमाचली लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही वो अनमोल विरासत है जो हमारी संस्कृति परंपरा और लोक जीवन को आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला लोकगीत आपको सुनवाते हैं राज प्रभाकर का गाया।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप जुड़े हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं हिमाचली लोक गीतों का शुभ प्याग। श्रोताओं, सादगी, अपनापन और दिलों का मेल, यही तो है पहाड़ी जीवन की असली दौलत। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो हिमाचल की इसी खूबसूरत सोच को सुरों में पिरोता है। सोनाली डोगरा का गाया ये लोकगीत है।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है कुछ ही देर में पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
4: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
5: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नैनी पांडे।
3: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा

0: कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के

0: साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
2: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। 3 भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 से हरा दिया है। बर्मिंगहम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम गिर बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज।

और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: at Edgbaston. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने सुहाने। गाने सुहाने कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत। दोस्तों, सुबह की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या होती है? जी हाँ, ये हमें हर रोज मौका देती है एक नई शुरुआत का। तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए और अपने दिन को शानदार बनाने की कोशिश कीजिए। और आपकी ये कोशिश तभी कामयाब होगी जब आप टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और आपकी इस कोशिश में हम भी आपका साथ निभाएंगे। आपको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए प्यारे प्यारे से गीत सुनवाएंगे।

गाने सुहाने ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय श्रोता सुन रहे हैं। श्रोताओं, फिल्मों की कहानी 2-3 घंटे में पूरी हो जाती है, लेकिन उसके गीत सालों साल हमारे साथ चलते हैं, सालों साल उन गीतों का असर हम पर रहता है। शायद इसीलिए अच्छे गीत हमें कभी भी पुराने या उनसे हम कभी भी ऊबते नहीं। तो चलिए अब कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
6: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
7: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
8: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
7: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
8: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
7: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
8: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
9: Nexa.
10: गाने सुहाने। जी हाँ, ये कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी आप हमें सुन सकते हैं। रविवार हो, छुट्टी हो या फिर हो कोई काम काजी दिन, अगर बैकग्राउंड में अच्छे गीत बज रहे हो तो हर काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो जहां भी हैं मुस्कुराइए। और अब बारी है अगली गीत की।

श्रोताओं, सुबह की घड़ी आगे बढ़ रही है और हमारे संगीत का ये सफर भी आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है आपके चेहरे पर हम एक मुस्कान लाने में कामयाब हुए हों, और कामयाब अगर हम हुए हैं तो इस मुस्कान को यूं ही बनाए रखिए, क्योंकि अब आ रहा है एक और प्यारा सा गीत।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही

0: देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
1: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जाँच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
2: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, कहते हैं सुबह की शुरुआत अगर मुस्कुरा कर की जाए तो दिन आसान हो जाता है। और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, आपके दिन को आसान बनाने के लिए हमने एक छोटी सी ये कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन जो है वो अच्छे से गुजरे और ये मुस्कान जो है आपके चेहरे पर हमेशा कायम रहे। और अब मेरा है जाने का वक्त।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने सुहाने। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनिए कार्यक्रम गीतांजलि।

कार्यक्रम गीतांजलि में सभी श्रोताओं का स्वागत। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी बिल्कुल, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, एक अनजाना सब बंधन है हमारे बीच और हमारे श्रोताओं के बीच, जो हम बिना किसी डोर के ही खींचे चले आते हैं। आज का ये कार्यक्रम श्रोताओं गीतांजलि, इसमें आज की जो गीतों की लिस्ट है वो हमने तैयार नहीं की, वो तैयार की है आपने। जी हाँ, आपकी ही फरमाइशें आज हम पूरी करेंगे, जो आपने हमें भेजी हैं हमारी फेसबुक पर जो पोस्ट है उस पर कमेंट के माध्यम से, और साथ ही हमारी ईमेल के माध्यम से आपने जो फरमाइश हम तक पहुँचाई है, हम उनमें से कुछ फरमाइशों को पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो हमसे प्यार करते हैं और हमसे जुड़ते हैं हर रोज़, और जुड़ते हैं तो उनका मन होता है हमसे बात की जाए और अपनी पसंद का गीत सुना जाए, लेकिन इतनी फरमाइशें हैं कि हर गीत सुनाना तो मुनासिब हमारे लिए नहीं है, लेकिन कुछ एक गीत सुनवाएंगे और कोशिश करेंगे सभी श्रोताओं के नाम इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएं। पीतमपुरा दिल्ली से रानी गौड़, उमेश गौड़ और पूरा परिवार किसी भी गीत को शामिल करने के लिए उन्होंने फरमाइश की है। उसके अलावा आगे बात करें तो आपको हार्दिक नमस्कार ये लिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम पेश करते हैं और बेहतरीन नगमे सुनवा रहे हैं। एक नगमा सुनने के लिए उन्होंने हमें फरमाइश की है, सावन को आने दो फिल्म का ये गीत है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान छिम्पा, पूजा परिहार लिख रहे हैं। जी, सावन को तो आने से कोई नहीं रोक सकता, सावन आ गया है। हम अगले श्रोता को शामिल करते हैं जिन्होंने गीत के लिए फरमाइश भेजी है, वो हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह ये लिख रहे हैं। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, मेरा नाम जोकर फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा है। कार्यक्रम गीतांजलि में एक और फरमाइश अब शामिल करते हैं, मनमौजी फिल्म का गीत सुनना चाहा है इन्होंने लता मंगेशकर की आवाज़ में। कोहका भिलाई से ये फरमाइश हमें भेजी है। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल ने धमधा ग्राम सुखरी कला से ही इसी फरमाइश को इन्होंने साथ में जोड़ा है। अमित जंघेल इनका नाम है, शकुन जंघेल हैं, आरुषि जंघेल हैं, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल हैं। गीतांजलि कार्यक्रम की अगली फरमाइश के लिए हमें ये SMS आया है, प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार और राम देवरा से दिनेश चौहान। और प्यार झुकता नहीं फिल्म के गीत के लिए फरमाइश एक और श्रोता ने हमें की है, गांव 5 MD पत्रोड़ा अनूपगढ़ राजस्थान से ये फरमाइश है। मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। और प्यार झुकता नहीं फिल्म के दो अलग अलग गीतों की फरमाइश की गई है, लेकिन एक ही फरमाइश हम एक समय में पूरी कर सकते हैं, तो प्यार झुकता नहीं फिल्म से ये गीत सुनिए।

जी हाँ, रूठने और मनाने में ये ज़िंदगी ना बीत जाए, रूठना नहीं है और हमेशा खुश रहना है और सबको खुश रखने की कोशिश करनी है। कार्यक्रम गीतांजलि आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं। आपके SMS, आपकी फरमाइश, आपकी ईमेल्स पर आधारित आज का ये कार्यक्रम है। अगली फरमाइश की बात करें, फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और छाया फिल्म के गीत के लिए उन्होंने फरमाइश की है। अगली फरमाइश लिख रहे हैं, नमस्कार, असलगाँव बाजार, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन माठे, संचय माठे, ज्ञानेश्वर माठे, देवेंद्र भटकर जी, मिस्टर क्यू फिल्म का गीत इनकी फरमाइश है। और अगली फरमाइश की बात करें, अगली फरमाइश हमें आई है ग्राम बग बुड़वा से, पथरिया छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश है। भेजने वाले हैं नरेन नेताम और कुसुम नेताम, दोस्ती फिल्म के गीत के लिए फरमाइश कर रहे हैं। साथ ही नमस्कार कह रहे हैं, नमस्कार हमारे श्रोताओं को, आपको भी नमस्कार। जिंदगी और तूफान फिल्म के लिए अगली फरमाइश आई है और फरमाइश भेजने वाले हैं गाँव हांडी खेड़ा, ज़िला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। अगला गीत श्रोताओं बताएं आपको जिसके लिए फरमाइश है, वो है गुमराह फिल्म का चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं। इस गीत के लिए फरमाइश आई है ओल्ड लिसनर ग्रुप रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब की। अगले गीत की हम बात करें, जो फरमाइश हमारे पास है वो है, लिख रहे हैं सप्रेम, नमस्कार जी, थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत इनकी फरमाइश पे आया है। अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से ये भेजने वाले हैं माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा। और एक फरमाइश है दीवाना फिल्म के गीत के लिए हमारे पास, लिख रहे हैं, हमारा पता है दयानंद भवानी पेठा सोलापुर महाराष्ट्र से, और हमारे नाम हैं, बहुत प्यारे से नाम इन्होंने इमोजिस के साथ भेजे हैं, विष्णु, मस्किन, रितिका, वाणी, आरव, चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, संगीता, आरोही और प्रियांशी। चलिए इन्हीं की फरमाइश पूरी की जाए, दीवाना फिल्म का ये गीत सुनवाया जाए इनको, और उम्मीद करते हैं सभी श्रोता भी इस गीत को सुनेंगे और पसंद करेंगे।

गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, कोई वक्त था जब हम चिट्ठियां लिखा करते थे, आज लोग ईमेल के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से या मैसेंजर पर हमें मैसेज भेज सकते हैं और अपनी फरमाइश का गीत जो है उसके लिए फरमाइश कर सकते हैं। अगले फरमाइश के बारे में बात करते हैं। अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा ने फरमाइश भेजी है। थोड़ी सी बेवफाई फिल्म के गीत के लिए फरमाइश। अगली फरमाइश पर आए रिस्पेक्टेड आरजे जी, जय माता दी, जय माता दी जी। धर्मात्मा फिल्म के गीत के लिए फरमाइश कर रहे हैं ये रामगढ़ कैंट झारखंड से हैं निप्पी सहनाए और इनके साथी हैं सभी। अगली फरमाइश आई है हमारे पास नलेश्वर नगर नलवेल महाराष्ट्र से पीएस

नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुहरकर, इनकी फरमाइश आई है असली नकली फिल्म के गीत के लिए। फिल्म बीबी हो तो ऐसी का गीत सुनना चाहा है ज्योति माकड़, मन्नत माकड़, कमल साहनी पिंगावाला चौक जलंधर से ये फरमाइश भेज रहे हैं। अगली फरमाइश पर आए तो पसंद करता है दंतेरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, बॉर्डर फिल्म के गीत के लिए ये फरमाइश कर रहे हैं। अगली फरमाइश है जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागिनी रिया रेणु, दिव्यांश आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर, सुनील पाठक, किसी भी गीत के लिए इन्होंने फरमाइश की है, ग्राम लोहेड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, यूपी से। अगली फरमाइश पर हम आएं तो अगली फरमाइश हमें भेजी है हीरो फिल्म के गीत के लिए, ये फरमाइश है और फरमाइश करने वाले हैं गुजरात जूनागढ़ से करीट सोलंकी, मेरे साथ मेरे ससुर जी और मेरी बेटी श्रीमती कीर्ति सोलंकी, और इसी गीत के लिए फरमाइश की है एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ, अंभई तहसील सिलोड़ा, जिला छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्रजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के ने इनकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। सुनिए अपनी फरमाइश कहेगी।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं प्रादेशिक समाचारों के लिए। 9:20 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार, और हम आपसे मिलेंगे समाचारों के बाद।

0: जब झुक के।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: नौ आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज एक दिवसीय हमीरपुर दौरे पर, कई विकास योजनाओं के करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की धर्मशाला में कल से प्रस्तावित बैठक स्थगित। जलोड़ी जोत में समुदाय आधारित इको टूरिज्म मॉडल बना आजीविका संरक्षण सहभागिता की मिसाल। प्रदेश पुलिस ने एंटी चिट्टा अभियान के तहत प्रदेश भर में चलाया विशेष तलाशी अभियान, 840 संदिग्धों की हुई स्क्रीनिंग। और प्रदेश में मॉनसून 18 जुलाई से फिर पकड़ेगा रफ्तार, भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने गृह जिला हमीरपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री हमीरपुर में रानी झांसी पार्क पर नगर निगम की 13 दुकानों का उद्घाटन करेंगे और टाउन हॉल परिसर में नगर निगम के कार्यालय भवन का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री टाउन हॉल में ही एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर बाद शिमला लौट आएंगे। उपायुक्त गंधर्व राठौड़ ने नगर निगम के अधिकारियों को उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की धर्मशाला में 16 और 17 जुलाई को प्रस्तावित बैठक स्थगित हो गई है। ये बैठक पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की व्यवस्था के कारण स्थगित हुई बताई जाती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बैठक स्थगित होने की पुष्टि करते हुए कहा कि अब ये बैठक अगले सप्ताह होगी, हालांकि फिलहाल इसकी तिथि तय नहीं हुई है। इस बैठक में पार्टी के संगठनात्मक मुद्दों, सरकार व संगठन के बीच स्वयं और राजनीतिक नीतियों पर चर्चा होनी थी। पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के हाल ही में संपन्न चुनाव में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आज शिमला के निकट मशोबरा में होगा। प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सी पाल रासु इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व क्षमता को सशक्त बनाने, पंचायतों में सुशासन और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा महिला जनप्रतिनिधि अपने अनुभव व सुझाव भी साझा करेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक विपिन सिंह परमार ने कांगड़ा के परौर स्थित निर्माणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। परमार ने कॉलेज की स्थिति के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि सरकार की लापरवाही ने करोड़ों रुपए की इस संपत्ति को खंडहर बना दिया है। परमार ने इस निर्माणाधीन कॉलेज भवन का दौरा करने के बाद कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 30 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को शुरू करवाया था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इसे कॉलेज के भवन के कार्य को शीघ्र पूरा नहीं किया तो भाजपा इस मुद्दे पर जन आंदोलन करेगी। कुल्लू जिले की प्रसिद्ध जलोड़ी जोत में वन विभाग द्वारा आरंभ किया गया सामुदायिक आधारित इको टूरिज्म मॉडल स्थानीय महिलाओं को रोजगार के साथ साथ प्रदेश के हस्तशिल्प और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
1: कुल्लू जिला में इको टूरिज्म को केवल पर्यटन गतिविधि तक सीमित न रखकर उसे स्थानीय आजीविका, सामुदायिक भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की दिशा में वन विभाग ने एक सराहनीय और अनुकरणीय पहल की है। जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जलोड़ी जोत में विकसित कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म मॉडल इस बात का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। इस क्षेत्र को सुनियोजित ढंग से विकसित करते हुए वन विभाग ने लाडा के सहयोग से यहां लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से 11 इको हट्स, नेचर इंटरप्रिटेशन एंड सर्विस सेंटर तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का सृजन किया है। इनमें से 7 इको हट स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वे यहां आने वाले पर्यटकों के लिए ठहरने, स्थानीय व्यंजनों और आतिथ्य सेवाओं की व्यवस्था कर सकें। विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूह की भागीदारी इस मॉडल को और अधिक सशक्त बनाती है। करीब 100 महिलाएं जलोड़ी से रघुपुर फोर्ट तथा जलोड़ी से श्रीअलसर झील के रास्ते अपने हाथों से निर्मित शाल, पट्टू, जुराबे, दस्ताने, मफलर, धातु टोपी व अन्य ऊनी वस्त्रों को और पारंपरिक उत्पादों की बिक्री कर रही हैं। इसे एक और जहां हिमाचली हस्तशिल्प और स्थानीय संस्कृति को पहचान मिल रही है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों को

कराने के लिए समाधान समारोह यानी विशेष लोक अदालत 2026 के लिए इच्छुक पक्षकार 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कांगड़ा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण धर्मशाला के सचिव आर मेहुल शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह और मध्यस्थता से निपटाने के लिए गूगल फोरम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि आम लोगों के लिए न्यायालय सुलभ बनाने के उद्देश्य से 21 अप्रैल से सर्वोच्च न्यायालय परिसर में समाधान समारोह का शुभारंभ किया गया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश पुलिस ने अपने एंटी चीटा अभियान के तहत राज्यव्यापी गहन तलाशी अभियान चलाया और 573 निर्जन स्थानों पर संदिग्ध लोगों को निरीक्षण किया। इस अभियान के तहत गांवों और शहरों में संदिग्ध लोगों के आवश्यकतानुसार मूत्र के नमूने भी एकत्रित किए गए। पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि इस अभियान का उद्देश्य निर्जन, एकांत और अर्ध सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना था, ताकि प्रदेश में सुरक्षित और नशामुक्त वातावरण बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान कुल 840 संदिग्ध लोगों की स्क्रीनिंग की गई और 1774 वाहनों की तलाशी भी ली गई। प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस विभाग प्रदेश में चिट्टे के समूल नाश के लिए दृढ़ संकल्प है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना को लेकर लगातार झूठ बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2019 से 22 तक की मांगी गई जानकारी के जवाब में ये खुलासा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी योजना शुरू करने में नाकाम रहे और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं को घोटाले का झूठा नाम देकर कीचड़ उछाल रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने प्रदेश सरकार पर पर्यावरण कानूनों की खुली अनदेखी करने का आरोप लगाया है। संदीपनी भारद्वाज ने शिमला में एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम के तहत बोर्ड में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार ने सचिव पर्यावरण को ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया है, जो नियमों विरुद्ध है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार इस तरह के गलत निर्णय लेकर संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर कर रही है और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का राजनीतिक व मनमाना उपयोग कर रही है। उन्होंने सरकार से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तुरंत पूर्णकालिक सदस्य सचिव की नियुक्ति की मांग की है। मॉनसून के प्रदेश में कई दिनों तक सक्रिय बने रहने के बाद अब इसकी रफ्तार कुछ धीमी हो गई है। राज्य में बीते दो दिनों से मॉनसून की नाममात्र की वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 17 जुलाई तक मॉनसून के कमजोर बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने कहा कि 18 से 22 जुलाई के बीच प्रदेश में मॉनसून फिर से सक्रिय रहेगा और इस दौरान अधिकांश स्थानों पर मॉनसून की वर्षा की संभावना है। विभाग ने इस अवधि के दौरान भारी वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया है। शोभित कटिया ने कहा कि प्रदेश में जुलाई महीने में अभी तक सामान्य से 21% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, अनुबंध कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियमित करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिया था आदेश, कर्मचारियों को नोटिस, 24 अगस्त तक मांगा जवाब। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, किशाऊ जलविद्युत परियोजना से निवेश किए बिना 600 करोड़ राजस्व। नालागढ़ में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर दैनिक जागरण का शीर्षक है, निवेशकों से 40% राशि पहले लेगी सरकार। जबकि हिमाचल दस्तक के शब्द हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश को मापदंड तय। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, सोलन को 500 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री सुक्खू ने ममलीग में निर्मित परियोजना का किया उद्घाटन। दैनिक सवेरा टाइम्स ने राज्यपाल कविंद्र गुप्ता के हवाले से लिखा है, हर 3 माह में हो विश्वविद्यालय कोर्ट की बैठक, शोध कौशल आधारित शिक्षा पर दे जोर। अंत में मुख्य समाचार।

0: फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज एक दिवसीय हमीरपुर दौरे पर, कई विकास योजनाओं के करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की धर्मशाला में कल से प्रस्तावित बैठक स्थगित। जलोड़ी जोत में समुदाय आधारित इको टूरिज्म मॉडल बनना आजीविका संरक्षण और सहभागिता की मिसाल। प्रदेश पुलिस ने एंटी चिट्टा अभियान के तहत प्रदेश भर में चलाया विशेष तलाशी अभियान, 840 संदिग्धों की हुई स्क्रीनिंग। और प्रदेश में मॉनसून 18 जुलाई से फिर पकड़ेगा रफ्तार, भारी वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से हम बोल रहे हैं। एक बार फिर स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गीतांजलि में। आज का ये कार्यक्रम श्रोताओं हमारा केंद्रित है आपके हमारे फेसबुक पेज पर आए मैसेजेस पर, मैसेंजर्स पर आए मैसेजेस पर और ईमेल के द्वारा आपकी फरमाइशों पर। आपकी फरमाइश लेने से पहले श्रोताओं कार्यक्रम में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
4: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
5: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
4: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
5: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
5: Hurry, limited stock available.
4: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
6: Nexa.
5: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
5: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
5: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
5: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
6: Nexa.
3: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से कार्यक्रम गीतांजलि में एक बार सभी श्रोताओं का फिर स्वागत। श्रोताओं अब फरमाइशों का पिटारा खोलते हैं ईमेल से, लेकिन उससे पहले एक हमारा विनम्र आग्रह है सभी श्रोताओं के साथ कि ईमेल या फेसबुक के माध्यम से किसी एक जगह ही फरमाइश भेजें, दोनों जगह पर फरमाइश ना भेजें और एक फरमाइश एक ही बार भेजी जाए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। नहीं तो अब ईमेल से हम फरमाइश लेना शुरू करते हैं। तेलंगाना भोनगीर से ये हमें फरमाइश आई है मोहम्मद बुराहुद्दीन फजान फरहान समीरा आजीन गुड़िया की, और इन्होंने हमें आदाब लिखा है और किसी भी नगमे के लिए फरमाइश की है। मेरा नाम जोकर फिल्म के लिए फरमाइश आई है पद्मा टॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, यही फरमाइश फेसबुक पर भी हमने पढ़ी थोड़ी देर पहले। तो श्रोता एक गुजारिश हमारी माने कि एक ही जगह मैसेज करें। गांव फंसारी ज़िला हिसार से राजकुमार हुड्डी, प्रमोद कुमार हुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार हुडी नसीब फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस माउथान भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ये कार्यक्रम में फरमाइश कर रहे हैं किसी भी गीत की। अगली फरमाइश लिख रहे हैं आदाब, किसी भी गीत को शामिल करें। बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, साथ ही डंगूराम बिहार से डॉक्टर बबलू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्या, अभियानंद आर्या और परमानंद आर्या, समीरपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, इनकी मिलीजुली फरमाइश है किसी भी गीत के लिए। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश जुदाई फिल्म के गीत के लिए फरमाइश कर रहे हैं। गांव फरांसी ज़िला हिसार से राजकुमार हुड्डी

आई एक बार फिर से इन्होंने फरमाइश दोबारा कर दी है। अनजान अनजाना फिल्म का ये गीत इन्होंने सुनना चाहा है। श्रोताओं, अनजाना फिल्म का गीत यही वाला हमने आज सुबह कार्यक्रम सुबह सुहानी में सुनाया और उम्मीद करते हैं श्रोताओं ने सुना होगा वो गीत। अगली फरमाइश है खुशनुमा नमस्ते, ये हमें लिख रहे हैं, आपको भी खुशनुमा नमस्ते। गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से ये हमें फरमाइश कर रही हैं किसी भी गीत के लिए। फिल्म संगम का गीत सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, इन्होंने सभी ने। और अगली फरमाइश है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, गुड्डू ये फरमाइश कर रहे हैं विश्वास फिल्म के गीत के लिए। दिल फिल्म के गीत के लिए फरमाइश की है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार इस गीत के लिए फरमाइश कर रहा है। तो उनकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, सुनिए दिल फिल्म से ये गीत।

श्रोताओ, इसी गीत के लिए हमें फरमाइश आई थी गुजरात जूनागढ़ से किरीट सोलंकी। मेरे साथ थे मेरे ससुर और उन्हीं का ये पसंदीदा गीत हमने सुनवा दिया। और अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगली फरमाइश पर आते हैं। श्रोताओ, अगली फरमाइश हमें भेजी है अजीत कासाना, माया देवी ऋतिक और आदित्य कासाना, लदावली जिला मुरादाबाद से। ये लिख रहे हैं, वंडरफुल सॉन्ग सिलेक्शंस, लाजवाब प्रस्तुति, शानदार प्रोग्राम और किसी भी गीत की फरमाइश ये कर रहे हैं। अगली फरमाइश ईमेल के माध्यम से ही है। सप्रेम नमस्कार, कार्यक्रम गीतांजलि के लिए मेरी फरमाइश जॉनी मेरा नाम फिल्म का पल भर के लिए। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और जस्वी यादव, इसी गीत के लिए पल भर के लिए। इसी गीत के लिए फरमाइश एक और हमारे पास है, कोट सिटी बरका काना से अफजल, ताज, शाहिन, सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। इसी गीत के लिए फेसबुक के माध्यम से हमें फरमाइश आई है। नमस्ते जी, ये लिखते हैं चर डोगरी पिपीरिया जिला कबीर छाम छत्तीसगढ़, दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, इस गीत के लिए। ये तीनों फरमाइशें हैं तो कार्यक्रम में ये गीत शामिल कर रहे हैं इन सभी की पसंद पर और सभी श्रोताओं के लिए भी।

श्रोताओं, इसी फिल्म के गीत के लिए फरमाइश है आदरणीय प्रसारक साहिबा जी नमस्कार। ये सस्नेह नमस्कार हमें कर रहे हैं, गगनदीप थांदी हैं, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। इन्होंने इस फिल्म के किसी और गीत के लिए फरमाइश की है, लेकिन एक फिल्म का एक ही गीत सुनवाया जा सकता है, तो इसी गीत का आप लुत्फ उठाइए।

गीतांजलि कार्यक्रम फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये, और फेसबुक पेज के माध्यम से जो आपने फरमाइशें भेजी हैं, ईमेल के माध्यम से जो फरमाइशें हैं आज इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। अगली फरमाइश की बात करें, जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, कोई भी गीत सुनवाने के लिए फरमाइश इन्होंने की है और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद लिखा है। आपका भी धन्यवाद हमें मैसेज करने के लिए। और उसके बाद बात करते हैं अब सागर लखना नौद मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे। गीतांजलि कार्यक्रम के लिए उन्होंने फ़ोन किया है, माफ़ कीजिए, और चिराग फिल्म के गीत की इनकी फरमाइश है। अहमदगढ़ मंडी पंजाब मोहम्मद अनवेर अंसारी, रिबना जावेद अंसारी और इनके सभी साथी फरमाइश कर रहे हैं। एनी सॉन्ग यानी कोई भी गीत ये सुनना चाहते हैं। चांदनी फिल्म के गीत के लिए फरमाइश की है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपरा ढींगिया ने बागपत उत्तर प्रदेश से। अगली फरमाइश है, प्रिय प्रसारक जी प्यार भरा नमस्कार, आपको भी हमारा स्नेह भरा नमस्कार। मीरा का मोहन फिल्म के लिए ये फरमाइश है ग्राम कुश्ता बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से, प्रवीण हाणोगे, योगिता हाणोगे, कुमारी प्रियाली हाणोगे, पार्थ हाणोगे और हाणोगे परिवार की तरफ से फरमाइश ये हमारे पास आई है। बड़ा बम चौंक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू दस्तक फिल्म के लिए फरमाइश कर रहे हैं। अगली फरमाइश पर आएं तो रिस्पेक्टेड होस्ट जी नमस्कार, जी नमस्कार, किसी भी गीत के लिए ये फरमाइश कर रहे हैं। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राजकुमार, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साहेना शर्मा, इनकी फरमाइश है किसी भी गीत के लिए। गीतांजलि कार्यक्रम की अगली फरमाइश है मनमौजी फिल्म का गीत सुनना चाहा है, मैं तो तुम संग नैन लड़ाकर, लता मंगेशकर का ये गाया हुआ गीत है। नरगोड़ छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश हमें भेजी है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी में, उनकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। मनमौजी फिल्म का ये गीत लीजिए, सुनिए, सभी श्रोता भी इस गीत का आनंद लीजिए।

गीतांजलि कार्यक्रम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं और हमारे फेसबुक पेज पर आए आपके मैसेजेस यानी कमेंट के जरिए आपने जो अपनी फरमाइश भेजी है उस पर और ईमेल के द्वारा जो आपने फरमाइश भेजी है उस पर आधारित आज का ये कार्यक्रम है। अगली फरमाइश पर आते हैं। जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिका, बलबीर सिंह, किसी भी गीत को शामिल करने के लिए फरमाइश इन्होंने की है। अगली फरमाइश में ये कह रहे हैं, कोई भी गीत शामिल करें। नमस्कार जी, आपको भी नमस्ते। फरमाइश करता है मालवा रेडियो संघ, श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आटो आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। अगली फरमाइश पर हम आए तो राम राम जी, राम राम जी, आपको भी कोई भी गीत सुनवाने की ये फरमाइश कर रहे हैं। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहुजा। मोम की गुड़िया फिल्म के लिए अगली फरमाइश है, सप्रेम नमस्कार। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव ने ये फरमाइश हमें भेजी है। गीतांजलि कार्यक्रम के लिए अगली फरमाइश आई है, चरस फिल्म का गीत है, आजा तेरी याद आई, ये सुनना चाहते हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट इनकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं और इस गीत का लुत्फ सभी श्रोता उठाएंगे उम्मीद करते हैं।

गीतांजलि कार्यक्रम में फरमाइश का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जीवन मृत्यु फिल्म का गीत सुनना चाहा है कुंडी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष ने इस गीत की फरमाइश की है। हीरो रांझा फिल्म का ये गीत ये दुनिया ये महफिल भटिंडा रोड मंडी डबीवाली से ये फरमाइश हमें भेजी है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने। कटिपतंग फिल्म के लिए फरमाइश आई है गांव लुसिड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद सिंह वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। गांव फारंसी जिला हिसार से राजकुमार हुडी, प्रमोद कुमार हुडी ये फरमाइश दोबारा इन्होंने भेजी है नसीब फिल्म के गीत के लिए। आज अभिनेत्री बी सरोज देवी, भैरपा सरोज देवी जी की स्मृति दिवस पर चित्रपट ससुराल का गीत इन्होंने ये मैसेज कल किया था, पिछले कल यानी 14 जुलाई को उनकी स्मृति दिन था उसके उपलक्ष्य पर उन्होंने ये गीत सुनना चाहा था ससुराल फिल्म का। और गीत की सुनने की फरमाइश है ऊपर कोट मोहल्ला चुठकनी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी और इनके अन्य साथियों ने। और एक फरमाइश हमारे पास है मेरा साया फिल्म के गीत के लिए जिल्हा नांदेड़ यताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्पण जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल ने। तो इन सबकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं कार्यक्रम के आखिर में और बहुत से श्रोताओं ने हमें और मैसेजेस किए हैं लेकिन वक्त हमारे पास इतना ही है। जिन मैसेजेस को हमने अभी शामिल किया उन श्रोताओं से गुजारिश कुछ समय के बाद हमें अब मैसेज करें ताकि अन्य श्रोता जो हैं जिनके मैसेजेस हम आज नहीं शामिल कर पाए हैं अगली बार उनके मैसेज शामिल करने का हमें मौका मिले।

जो नए श्रोता हमें मैसेज करना चाहते हैं, अपनी फरमाइश भेजना चाहते हैं, वो हमारे फेसबुक पर जो रिसेंट हमारी पोस्ट डलती है यानी हालिया पोस्ट जो डलती है उस पर अपना फरमाइश हमें भेज सकते हैं। और म्यूज़िक मेल dshala@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से भी हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ, तकनीकी सहयोग रहा सुनील शर्मा का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतिंदर पाल सिंह। रुख्सत लेने से पहले श्रोताओं से कहना चाहेंगे, आज अगर कोई काम आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो तो खुद से नाराज होने से पहले एक बार याद रखिएगा, मशीनें भी कभी कभी रुक जाती हैं, फिर हम तो इंसान हैं। सो कीप स्माइलिंग समहाउ। बाय फॉर नाउ।

के साथ आपकी रेडियो दोस्त ज्योति। तो चलिए बिना एक पल भी गवाए इस संगीत की रफ्तार को बढ़ाते हैं आगे। इस सफर की पहली पेशकश एक ऐसी फिल्म है जिसने साल 2000 में आते ही युवाओं के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। आनंद राज आनंद का धमाकेदार म्यूजिक, फिल्म बिच्छू से हैरी आनंद और सुनिधि चौहान की दमदार आवाजों में समीर का लिखा गीत आपको सुनवा रहे हैं।

आकाशवाणी धर्मशाला से हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं और इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां का। कार्यक्रम की अगली पेशकश मैं हूं ना।

इस फिल्म से ये खूबसूरत गीत आपके रेडियो सेट्स पर पहुंचा रहे हैं। अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत अनु मलिक का।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं जोड़ी नंबर 1 फिल्म से ये अगला गीत। सोनू निगम और अलका याग्निक के मिले जुले स्वर हैं, सुधाकर शर्मा के बोल हैं और संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत अब आपके रेडियो सेट्स पर पहुंचा रहे हैं अंदाज फिल्म से। बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजें हैं, बोल समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवण का।

दहक फिल्म से ये खूबसूरत गीत आपने सुना उदित नारायण और अनुराधा पौंडवाल की मिलीजुली आवाजों में। श्यामराज लिखित ये गीत, आदेश श्रीवास्तव का संगीत। कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवा रहे हैं होगी प्यार की जीत इस फिल्म से। रूप कुमार राठौड़ और जसपिंदर नरूला की मदहोश आवाजें हैं।

कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत के साथ लेते हैं आपसे कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं राज प्रभाकर की आवाज में गाया हुआ ये लोक गीत।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

0: ये लोकगीत आपने सुना अंकुश संदल की आवाज में। कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम में लेते हैं ये अंतराल।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
1: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
0: Nexa. अब कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं निम्मो चौधरी की आवाज में गाया हुआ ये लोकगीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी लोकगीत वर्षा कटोच की आवाज में। इसी के साथ कार्यक्रम पहाड़ों के सुर में आज बस इतना ही।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने गृह जिला हमीरपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री हमीरपुर में रानी झांसी पार्क पर नगर निगम की 13 दुकानों का उद्घाटन करेंगे और टाउन हॉल परिसर में नगर निगम के कार्यालय भवन का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री टाउन हॉल में ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर बाद शिमला लौट आएंगे।

0: होनी थी। भाजपा प्रवक्ता संदीप ने भारद्वाज ने प्रदेश सरकार पर पर्यावरण कानूनों की खुली अनदेखी करने का आरोप लगाया है। संदीप ने भारद्वाज ने शिमला में एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम के तहत बोर्ड में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार ने सचिव पर्यावरण को ही प्रदेश नियंत्रण बोर्ड के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया है, जो नियमों के विरुद्ध है।
1: राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो सदस्य सचिव है वो ही प्रदेश पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी का सेक्रेटरी भी है। होना तो ये चाहिए था कि अलग अलग होते। जब कोई सचिव कोई आदेश पारित करता है तो अपील के लिए सेक्रेटरी के पास जाने का एक प्रोविजन होता है। भारतीय जनता पार्टी इस व्यवस्था के खिलाफ है। नहीं मालूम कारण की ऐसी कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि इस तरह से चला रखा है। भाजपा इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाएगी और कानून से ऊपर कोई भी सरकार नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है।
0: स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि विभाग में सभी श्रेणियों के लगभग 85% पद भर दिए गए हैं। उन्होंने शिमला में कहा कि सरकार स्वास्थ्य विभाग में मानव संसाधन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में विभाग में सिर्फ 35% पद ही भरे गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर पात्र लाभार्थियों को सहारा योजना का लाभ मिलना आरम्भ हो जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक विपिन सिंह परमार ने कांगड़ा के परौर स्थित निर्माणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की

0: अपना दिया है। परमार ने इस निर्माणाधीन कॉलेज भवन का दौरा करने के बाद कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 30 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को शुरू करवाया था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस कॉलेज के भवन के कार्य को शीघ्र पूरा नहीं किया तो भाजपा इस मुद्दे पर जन आंदोलन करेगी। मॉनसून के प्रदेश में कई दिनों तक सक्रिय बने रहने के बाद अब इसकी रफ्तार कुछ धीमी हो गई है। राज्य में बीते 2 दिनों से मॉनसून की नाममात्र की वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 17 जुलाई तक मॉनसून के कमजोर बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने कहा कि 18 से 22 जुलाई के बीच प्रदेश में मॉनसून फिर से सक्रिय रहेगा और इस दौरान अधिकांश स्थानों पर मॉनसून वर्षा की संभावना है। विभाग ने इस अवधि के दौरान भारी वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया है। शोभित कटिया ने कहा कि प्रदेश में जुलाई महीने में अभी तक सामान्य से 21% अधिक वर्षा दर्ज की गई है।
1: लास्ट 2 डेज से लगभग 12 जुलाई से मानसून काफी कमजोर पड़ चुका है पूरे प्रदेश में, लेकिन मानसून एक बार फिर से 18 जुलाई से हमारे हिमाचल प्रदेश में एक्टिव होगा और ये मानसून जो है लगातार 22 जुलाई तक एक्टिव बना रहेगा, जिसका असर पूरे प्रदेश में सभी जिलों में 18 जुलाई या 17 जुलाई की मिड नाइट से चालू होगा। मुख्य रूप से जो हमारे मिड हिल्स हैं और उससे लगे हुए जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं वहां पे भारी बारिश का भी दौर एक बार 18 जुलाई से हमें देखने को मिलेगा। मुख्यतः जो हमारा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू मंडी, शिमला, सिरमौर के साथ साथ ऊना और बिलासपुर जैसे जिले हैं वहाँ पे भारी बारिश की भी एक्टिविटीज जो है 18 जुलाई से और लेकर के कहीं ना कहीं 21 जुलाई तक लगातार हमें देखने को मिल सकती है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे कव्वालियाँ। पेशे खिदमत है कार्यक्रम की पहली कव्वाली लैला मजनू फिल्म से।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम की अगली पेशकश, उस्तादों के उस्ताद, इस फिल्म से ये अगली कवाली।

0: कव्वालियों का लुत्फ हमारे श्रोता इस समय उठा रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम में लेते हैं ये कमर्शियल ब्रेक।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
3: Nexa.
4: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
6: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
7: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

अपनी रेडियो दोस्त ज्योति को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कव्वालियां। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़े से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आँखों से नेत्रहीन हूँ। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
3: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
2: जी,
3: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
2: अजीत जी,

0: विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं। कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
1: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
0: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
1: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
0: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था। फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था
1: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था। फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
0: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
1: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
0: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्र वासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
1: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था श्रोताओं। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
0: जी,
1: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
0: जी।
1: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे। ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
0: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
1: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
0: जी।
1: अब ये जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
0: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्रवासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
1: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
0: जी।
1: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूं विमलेश जी, और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
0: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
1: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
0: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी

0: यही चौपाल
1: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया, आज तो बस यही बात हो रही थी कि
2: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है। नाना जी इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
1: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
0: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
2: ये लो नानी जी भी आ गई।
3: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
0: अरे कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
3: हाँ वो तो है।
1: नानी हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
3: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
0: अच्छा चलो भाई चलो मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
1: कहाँ से आया है?
0: भाई शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
1: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाई मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
2: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
0: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
1: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
0: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है, ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी मानसूनी पवन कैसे बनती है?
0: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
0: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
0: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया। नाना जी मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
0: देखो भाई यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
3: और बच्चों भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
0: हाँ।
3: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
1: ओ।
3: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
0: बिल्कुल।
3: और हाँ हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
3: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
3: हाँ।
0: बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला साहित्य त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
2: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
1: ओ।
3: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और

0: हाँ, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
1: वही, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
2: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव। और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम, शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

0: स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माता जी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है। पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो

0: क्यों रो रहे हो?
1: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
0: चुप हो जाओ। रो नहीं। मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने। इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो। अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
1: अच्छा।
2: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्र नाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्र नाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
0: महाशय हाँ? कोई बात नहीं
3: है?
0: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है। मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
2: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
0: परंतु माँ, एक अपराध हो गया।
4: क्या?
0: मुझसे शिवलिंग टूट गया। ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र, तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
0: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया।
0: माँ,
2: बाल्यकाल से ही नरेंद्र नाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्र नाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
5: नरेंद्र नाथ तुम सो रहे हो?
6: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
5: क्या सोच रहे हो तुम?
6: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
5: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
6: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
5: नरेंद्रनाथ, तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
2: नरेंद्र नाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्र नाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
6: प्रणाम महात्मन।
7: जीते रहो पुत्र।
6: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
2: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
7: पूछो पूछो।

0: तुम क्या पूछना चाहते हो?
1: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
0: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात ही कर रहा हूँ। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
2: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
1: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
2: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्रों भराए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना।

0: हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
1: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की, उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सादर नमन और आपके अपने कार्यक्रम में दिल से आपका स्वागत। तो आइए सैनिक साथियों, सुरों के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

सैनिक साथियों, हर नई धुन अपने साथ एक नया एहसास लेकर आती है। आइए इस एहसास को महसूस करते हैं और सुनते हैं आज की महफिल का ये अगला गीत।

0: कोई आपसा इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं। अगला गीत इस ब्रेक के बाद।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से

0: संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
1: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जाँच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
2: पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला सैनिक साथियों कार्यक्रम, एक बार फिर आपका स्वागत। गीत संगीत के सफर को आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ।

सैनिकों के लिए यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप इसे और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमें सुन सकते हैं। अब एक जरूरी सूचना, समाधान समारोह विशेष लोक अदालत 2026। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को निपटाने के लिए 31 जुलाई तक करें आवेदन। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला के सचिव श्री आर मेहुल शर्मा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह और मध्यस्थता से निपटाने के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह और मध्यस्थता से निपटाने के इच्छुक पक्षकारों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। उनके अनुसार आम लोगों के लिए न्याय सुलभ बनाने के सर्वोच्च न्यायालय के प्रयासों की कड़ी में 21 अप्रैल से सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में समाधान समारोह 2026 का शुभ आरंभ किया गया था और लंबित मामलों को समाधान समारोह 2026 में शामिल करने के लिए एक सरल गूगल फॉर्म तैयार किया गया है जो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.sci.gov.in पर उपलब्ध है। उनके अनुसार इच्छुक पक्षकार दिए गए लिंक के माध्यम से 31 जुलाई तक गूगल फॉर्म भरकर अपने मामले को इस विशेष लोक अदालत में शामिल करवा सकते हैं। गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वन स्टॉप सेंटर यानी वॉर रूम से संपर्क किया जा सकता है जिसके दूरभाष नंबर हैं 0112311465 0112311425 0112311425 इसके अतिरिक्त CRP निदेशक के दूरभाष नंबर 0112311

5652 पर भी संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम सैनिकों के लिए मैं एक बार फिर सभी सैनिक साथियों का और सभी श्रोताओं का स्वागत हो। श्रोताओं, महफिल जब शुरू की हो तो कब वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार

0: कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
1: सैनिक साथियों, वक्त बदलता रहता है, मौसम भी बदलते रहेंगे, कार्यक्रम बदलते रहेंगे और कार्यक्रमों में बजने वाले गीत भी बदलते रहेंगे, लेकिन जो कभी नहीं बदलेगा वो है इस देश के हर नागरिक के दिल में अपने सैनिकों के लिए सम्मान का भाव। इसी विश्वास, इसी कृतज्ञता के साथ आज के संगीतमय महफिल को यहीं पर समाप्त करने की मुझे दीजिए इजाजत। सैनिक साथियों, आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्यारी बहनों के लिए कार्यक्रम सुनो सखी।

नमस्कार सखी सहेलियों, कार्यक्रम सुनो सखी में आपका स्नेह अभिवादन करते हैं। मैं हूं आज आपके साथ आपकी अपनी सखी ज्योति, और आज बुधवार के इस अंक में हम लेकर आते हैं फैशन गलियारा। तो आज क्या है इस पिटारे में जान लेते हैं। सखी सहेलियों, कहा जाता है कि वस्त्र, जी हाँ, हमारे परिधान केवल तन नहीं ढकते, वे हमारी संस्कृति, पहचान और व्यक्तित्व का भी परिचय देते हैं। समय बदलता है, समाज बदलता है, और उसके साथ पहनावे में भी बदलाव आना स्वाभाविक ही है। लेकिन क्या आधुनिकता अपनाने का मतलब परंपराओं को पीछे छोड़ देना है, या फिर क्या केवल पारंपरिक पहनावा ही हमारी पहचान है? इन्हीं सवालों पर आज हम सब सखियां मिलकर बात करेंगे। सखियों, हमारा देश विविधताओं का देश है। हर राज्य, हर क्षेत्र, हर समुदाय की अपनी अलग वेशभूषा है। अपने प्रदेश हिमाचल की ही बात करें तो यहाँ के पारंपरिक वस्त्र जैसे चोला डोरा, लुआंचड़ी, टोपी, शॉल और आभूषण हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है। इन्हें पहनने से न केवल अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस होता है, बल्कि स्थानीय कारीगरों की मेहनत और कला का भी तो सम्मान होता है, है ना? कितनी बड़ी बात है ये सखियों। तो वहीं दूसरी ओर आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आधुनिक पहनावे का भी अपना महत्व है। विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालय या यात्रा के दौरान आधुनिक कपड़े अधिक सुविधाजनक और आरामदायक होते हैं, इसलिए आधुनिक पहनावा अपनाना कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन हाँ सखियो, संतुलन कैसे बनाया जाए पारंपरिक और आधुनिक परिधानों में, इसमें समझदारी की बहुत ज़रूरत रहती है। सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहेंगे कि अवसर को ज़रूर समझें। अवसर को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि घर पर या बाहर भी कोई धार्मिक आयोजन है, त्यौहार है, विवाह या पारिवारिक कार्यक्रम हो, तो पारंपरिक पहनावा देखिए हमारी संस्कृति का सम्मान बढ़ाता है, इन्हें ज़रूर पहने। तो वहीं पढ़ाई, नौकरी या दैनिक कामकाज के दौरान आरामदायक और सादगी पूर्ण आधुनिक वस्त्र भी बहुत उचित हैं। सखियों, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पहनावा चाहे पारंपरिक हो या आधुनिक, उसमें सादगी, स्वच्छता और गरिमा बनी रहनी चाहिए। कपड़ों की कीमत से ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें पहनने का तरीका और हमारा आत्मविश्वास। आजकल बहुत सी महिलाएं, हमारी बेटियां पारंपरिक और आधुनिक शैली का सुंदर मेल भी कर रही हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कुर्ती के साथ जीन्स, साड़ी के साथ सरल और आकर्षक आभूषण, या पारंपरिक दुपट्टे के साथ आधुनिक परिधान। तो इस तरह अपनी संस्कृति भी बनी रहती है और सुविधा भी। चलिए अब इस गीत

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।

0: so easy.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम सुनो सखी, अपनी रेडियो सखी ज्योति के साथ. और आज सखियो, फैशन गलियारा में हम बात कर रहे हैं आधुनिक और पारंपरिक पहनावे में कैसे बनाए रखे संतुलन, इस विषय पर. आगे बढ़ते हैं अब सखियो. हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि फैशन बदलता रहता है, लेकिन संस्कार और पहचान हमेशा साथ रहते हैं. इसलिए किसी के पहनावे को देखकर उसका मूल्यांकन करना भी उचित नहीं है. हर व्यक्ति को अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार वस्त्र पहनने का अधिकार है, बशर्ते कि उसमें शालीनता और अवसर का ध्यान जरूर रखा जाए. और एक और बात सखियो, आज हम देखते हैं कि आज फास्ट फैशन का चलन बढ़ रहा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े खरीदने की बजाय कम लेकिन टिकाऊ और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्र परिधान चुनना समझदारी है. इससे पैसे की भी बचत होती है और पर्यावरण की रक्षा में भी काफ़ी योगदान मिलता है. यदि संभव हो सकियो तो स्थानीय बुनकरों और हस्तशिल्प से बने वस्त्रों को भी ज़रूर अपनाइए. इससे हमारी लोक कला और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलता है. और जो हमारे नन्हे मुन्ने हैं ना सखियो, बच्चों को भी ज़रूर बचपन से ही अपने क्षेत्र की पारंपरिक वेशभूषा, उसके इतिहास, उसके महत्व के बारे में भी बताना है. क्योंकि जब बच्चे अपनी संस्कृति को समझेंगे तभी तो वे उस पर गर्व भी करेंगे. और स्मरण रखिए कि आधुनिकता का अर्थ अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ना नहीं है, बल्कि समय के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहना है. परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं. आइए सखियो, संकल्प लें कि अवसर के अनुसार उचित पहनावा हम अपनाएंगे, अपनी संस्कृति का सम्मान भी करेंगे, स्थानीय हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करेंगे और दूसरे के पहनावे का सम्मान भी ज़रूर करेंगे. और एक और खूबसूरत गीत अब आपको सुनवा रहे हैं

इस खूबसूरत से गीत को सुनते सुनाते लौट आए हैं एक बार फिर कार्यक्रम सुनो सखी में। और अब सखियों आपसे बात करेंगे 15 जुलाई को मनाए जाने वाले आज के दिवस की। आपको बता दें कि आज 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को ऐसे कौशलों से जोड़ना है जो उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में बहुत मददगार हो सकते हैं। आप भी जानती ही हैं सखियों कि आज के समय में केवल पढ़ाई ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई ना कोई व्यवहारिक कौशल होना भी बहुत आवश्यक है, जैसे सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर का ज्ञान, खाद्य प्रसंस्करण, ब्यूटी एवं वेलनेस, मोबाइल रिपेयरिंग, हस्तशिल्प, डिजिटल सेवाएं, कृषि आधारित तकनीकें या फिर छोटे उद्योगों से जुड़ा कोई भी कौशल। ऐसे हुनर न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं बल्कि आत्मविश्वास में भी हमारी बहुत वृद्धि करते हैं। हमारी बहुत सी सखियां अपने हुनर के बल पर घर बैठे स्वरोजगार को अपना रही हैं, कोई अचार, पापड़ और मसाले बनाकर आय अर्जित कर रही हैं, तो कोई सिलाई, बुनाई, कढ़ाई या ऑनलाइन माध्यम से अपने उत्पाद बेच रही हैं। ये सब सखियों कौशल की ताकत है। और आज तो सखियों सरकार और विभिन्न संस्थाएं भी युवाओं के लिए उनके लिए अनेक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही हैं। ऐसे अवसरों की जानकारी ज़रूर लें और अपनी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण भी प्राप्त करें, क्योंकि हुनर जीवन भर साथ रहता है और आवश्यकता पड़ने पर सम्मानजनक आजीविका का माध्यम भी ये बन सकता है। याद रखना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, मेहनत, लगन और सीखने की इच्छा ही सफलता की सबसे बड़ी पहचान है। तो आज विश्व युवा कौशल दिवस पर हम वादा करें खुद से कि स्वयं भी कोई नया कौशल सीखेंगे और अपने घर के युवाओं को भी सीखने के लिए कोई नया कौशल ज़रूर प्रेरित करेंगे। आइए सुनते हैं ये गीत।

इस खूबसूरत से गीत को सुनने के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर अपनी सभी सखियों का स्वागत करते हैं। और अब सखियों पहुंच चुके हैं हम खान पान की दुनिया में, जहां बात होती है सेहत और स्वाद की। सखियों, स्वस्थ जीवन का आधार है संतुलित और पौष्टिक खान पान। तला भुना और अत्यधिक मीठा भोजन कम मात्रा में हमने लेना है। घर पर बने ताज़े भोजन को प्राथमिकता दें। छोटे छोटे बदलाव अपनाकर हम अपने पूरे परिवार को और खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस कड़ी में आज हम बनाएंगे एक आसान, स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी। नाम है इसका अप्पे, जो दक्षिण भारत में सबसे अधिक बनाए और खाए जाते हैं। वहाँ इन्हें चावल और

उड़द दाल के खमीर वाले घोल से बनाया जाता है। आजकल सखियों सूजी वाले झटपट बनने वाले अप्पे भी बहुत लोकप्रिय हैं, तो चलिए आज कार्यक्रम सुनो सखी में बनाते हैं हम अप्पे। सामग्री इसके लिए आप जल्दी से नोट कीजिए, 1 कप सूजी, आधा कप दही, थोड़ा सा पानी, स्वादानुसार नमक, बारीक कटी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, कद्दूकस की हुई गाजर, हरा धनिया और आधा चम्मच इनो या फिर बेकिंग सोडा भी आप ले सकते हैं। अप्पे के सांचे को चिकना करने के लिए थोड़ा सा तेल भी हमें यहाँ चाहिए। अब जल्दी से बनाते हैं सखियों ये रेसिपी, जिसके लिए सबसे पहले सूजी और दही को मिलाकर गाढ़ा घोल हमने तैयार कर लेना है। आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा पानी भी आप मिलाएं और इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख दें। 20 मिनट के बाद इसमें आप प्याज, टमाटर, गाजर, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। अंत में सखियों इनो डालें और हल्के हाथ से घोल को मिलाएं। अब अप्पे के सांचे को हल्का सा तेल लगाकर गरम करें। प्रत्येक खाने में घोल भरें और मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट पकाएं। जब नीचे की ओर ये अप्पे सुनहरे हो जाएं तब आप इन्हें पलटें और दूसरी तरफ भी इसी तरह सुनहरा होने तक आपने इन्हें पका लेना है। गर्मा गर्म अप्पे सखियों बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें हरी चटनी, टमाटर की चटनी या फिर नारियल की चटनी के साथ आप परोसें, सांभर के साथ भी इन्हें खाया जाता है। तो सखियों आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और ये रेसिपी बच्चों के टिफ़िन, सुबह के नाश्ते या शाम की हल्की भूख के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। और चलिए कार्यक्रम में चलते चलते एक और गीत आपको सुनवाते हैं।

कार्यक्रम के इसी अंतिम नगमे के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। आपको बताते चलें कि आज के कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपनी रेडियो सखी ज्योति के साथ। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया विपिन कुमार ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह।

0: अपनी रेडियो दोस्त ज्योति को इजाजत। प्यारी सखियों नमस्कार। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई जीवंत क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में बताया कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि ये निर्यात को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये समझौते एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसान तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये समझौता एक परिवर्तनकारी कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

0: श्रृंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें यह नहीं लगेगा कि अभियान के उद्देश्य पूरे हो गए हैं। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज एटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में लगभग 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 372 अंक की वृद्धि के साथ 77,427 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक बढ़कर 24,152 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The India-United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force from today. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the agreement will benefit women, farmers, youth, MSMEs, innovators, professionals and fisherfolk, creating various opportunities. In an article in an English daily, Mr. Goyal said that this ambitious agreement will empower every section of society, reflecting the capabilities and aspirations of the people of India. Mr. Goyal said that it will not only benefit just Indian exporters, but also white-collar service sector professionals across skill sets. He noted that under the agreement, nearly all of India's exports to the UK will enjoy duty-free access. The Commerce and Industry Minister mentioned that the agreement safeguards sensitive farm products such as dairy, vegetables, apples, edible oils, oats, millets, cooking oils, and others by placing them in the sensitive list and added that no duty concessions have been granted to the UK on these items. The minister noted that these exclusions reflect the government's strategy of prioritizing food security, domestic price stability, and vulnerable farming communities. Prime Minister Narendra Modi has said that the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, and the Agreement on Social Security, which came into force today, is a significant moment in the partnership of India-United Kingdom. Mr. Modi made these remarks while sharing a social media post of Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Marking a milestone in bilateral economic relations, the first export consignment under the new Indo-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement was flagged off in Chennai today. The British Deputy High Commissioner to Chennai, Dr. Suttappa Chaudhary, joined the officials from the Directorate General of Foreign Trade to flag off the consignment. Industry bodies have described the India-UK Free Trade Agreement as a historic milestone in India's free trade agreement journey. Secretary General of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Anand Swarup, has said the agreement will go a long way in enhancing India's participation in global value chains. Mr. Swarup congratulated Prime Minister Narendra Modi on the operationalization of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement.
2: This agreement would open up new opportunities for the Indian industry in both goods and services.

0: Cooperation in innovation, technology and talent mobility will enhance Indian industry's competitiveness. The agreement is a major landmark in India's FTA journey and will go a long way in promoting India's participation in global value chains and encouraging innovation-led growth in both the countries, India and the United Kingdom.
1: President Draupadi Murmu has said that the central government has established Ayurveda and Yoga on the global stage with renewed energy. Addressing the inaugural function of Saushrutam 2026 in New Delhi today, the president expressed satisfaction that efforts are being made to establish the ancient tradition of Ayurvedic surgery on scientific standards. Vice President and Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan today administered the oath to the newly elected members of the Upper House. The members included Mansoor Ali Khan from Karnataka and Rajneesh Kumar Agrawal from Madhya Pradesh. United States President Donald Trump has claimed the Strait of Hormuz remains open to international shipping but is closed to Iranian traffic. He said U.S. officials had recently conveyed a message to Tehran, urging it to reach a deal or face further consequences. In an interview, Trump has warned Iran of intensified military strikes next week unless Tehran returns to the negotiating table. The IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Odisha today. Heavy rainfall is also expected over parts of northeast India, Bihar, West Bengal and Uttarakhand till tomorrow. And in FIFA Cup football, Spain stormed into the final, stunning France 2-0 in the first semi-final clash at Dallas Stadium in Texas last night. In other semi-final, defending champions, Argentina will face England at Atlanta Stadium tonight at 12:30 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज पर. दोपहर के 1:10 हुए हैं. आइए अब आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम.
3: मिले जुले रूप आज आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि काश प्यार ना किया होता तो अच्छा होता, क्योंकि पहले कर्म फिर सितम, फिर अपने प्यार के लिए रोना गिड़गिड़ाना, अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दिन रात उसी में लगे रहिए. लेकिन ये भी है कि प्यार एक ऐसा एहसास है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में से गुजरता ज़रूर है, और वो कहते हैं ना कि ज़रूर करना चाहिए, प्यार इंसान को बदल देता है. हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये भारत जीवन के एक सुंदर उत्सव का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है, जहाँ प्रेम, स्मृतियाँ और आत्मीयता मिलकर हमारे रूखे जीवन को एक सजीव कलाकृति में बदल देते हैं. बिल्कुल. एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय जीवन के विविध रंगों का मिलन है, और गीत इन्होंने लिखा है जो कि हम शामिल कर सकते हैं. देखते हैं अब कितने सारे गीत शामिल होते हैं आपकी पसंद के. चलिए बिना देरी के अगला गीत आपको सुनवाते हैं और देखते हैं कि कितने सारे लोगों ने ये गीत लिखा है लिस्ट में, और उसके बाद हम अपने सवाल जवाबों पर भी आएंगे. प्रोग्राम का ये अगला गीत

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्रियतमा, फिल्म का नाम, योगेश ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत। आपके खूबसूरत संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और इस गीत की डिटेल्स भी हम तक पहुंच चुकी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच्ची मोहब्बत जिंदगी का वो खूबसूरत ठहराव है जहां वक्त के सितम और हर दर्द भी प्यार में बदल जाते हैं। रूह से जुड़े ऐसे पाक रिश्ते किसी नाम या पहचान के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल सही लिखा आपने। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्ता नाम का मोहताज नहीं होता, ये तो विश्वास, अपनापन, सम्मान और सच्चे एहसास से बनता है। कई बार खून के रिश्ते भी दूर हो जाते हैं और कुछ अनजाने लोग दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि जीवन का अहम हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि ख्वाबों की दुनिया बेहद खूबसूरत होती है, कभी बादल, कभी पानी, कभी कोई जुदा हो गया तो फिर सपनों में आकर मिल जाता है और हम खुश हो जाते हैं। कभी कभी ख्वाब में रिश्ते टूट जाते हैं और सपने में टूटते ही वो रिश्ते भी टूट जाते हैं। रिश्तों की डोर भी नाजुक होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। सपनों के साथ और हकीकत के साथ एक बिल्कुल महीन सी एक रेखा होती है उसके बीच। बस ये ज़रूर है कि मन उड़ उड़ कर उस तरफ जाना

चाहता है, यानी कि सपनों की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि जो हकीकत में नहीं मिलता उसे कहीं ना कहीं वहाँ प्राप्त करना चाहता है, वहाँ उसे पाकर आनंदित होना चाहता है। हमारे पहले गीत के बारे में बात करते हुए एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के सफर में कभी सितम मिलते हैं तो कभी दिल को छू लेने वाला प्यार मिलता है। सच्चा रिश्ता वही होता है जो हर दर्द को मुस्कुराकर सहले और हर मुश्किल में साथ निभाए। बिल्कुल, रिश्ता अगर सच्चा हो तो दर्द की गुंजाइश ही नहीं रहती, सिर्फ प्यार ही प्यार होता है दो दिलों के बीच में, ऐसा भी कहना है हमारे एक श्रोता का। तो ये एक्सपीरियंस की बात है और जिस तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है हर किसी का अपना अपना अनुभव है। बिल्कुल, और इसीलिए तो हम यहाँ पर साझा करते हैं अपने विचार, ताकि हर कोई अपने बारे में अपने अनुभवों के बारे में लिख पाए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सितम अपनों के अक्सर हमें अंदर तक तोड़ देते हैं, क्योंकि अपनों से चोट की उम्मीद कोई नहीं करता। अक्सर ऐसा दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, और साहिर लुधियानवी ने अपनी मशहूर शायरी में भी इस दर्द को घोल डाला है और वो गीत बहुत प्यारा है, ऐसा इन्होंने लिखा। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे जो हिंदी सिनेमा के गीतकार हैं उनको पूरा क्रेडिट जाता है, पूरा श्रेय जाता है इसके लिए, और हर एहसासों को उन्होंने इस तरह से पिरोया है कि हमें लगता है वो हमसे जुड़ा हुआ है, हर गीत हमसे जुड़ा है। लेकिन ये भी है कि ज़िंदगी में कुछ भी एक सा नहीं होता, बदलाव तो रहता ही है, जीवन बदलता रहता है, स्थितियाँ बदलती रहती है, और मौसम भी तो बदलता रहता है, मौसम का काम ही बदलना है, कहते हैं ना कि मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे। तो ऐसा ही कुछ है अगला गीत समा के ऊपर, आप सुनिए, और साथ ही साथ क्यों ना, ये जो मौसम बदलता है इसी तरह से बहुत से परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तो ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आदतें एक बार अगर आ जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। आप मुझे लिखें, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके संदेशों का।

जमीन आसमां, इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। अनजान ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी, जैसा कि आप सब लोगों ने अपने संदेशों में भी लिखा है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि क्या बात है, उनकी फहरिस्त से मिलते जुलता ये तीसरे नंबर का गीत भी शामिल हो गया है, ऐसा समाना होता, और बहुत दिनों के बाद ये हैट्रिक लगी है और वो बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। दूसरे श्रोता हमारे एक लिखते हैं धुनों के बारे में, और उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम के शुरुआत में अनाउंसमेंट उद्घोषणा के पहले जो हमने फिलर बजाया था उसके बारे में वर्णन किया है, साथ ही साथ उन्होंने और भी जो हमने फिलर्स बजाए थे उसके बारे में लिखा है और पूरा जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।

ऐसा समाना होता, इसमें भी ये बेहतरीन बांसुरी का प्रीलूड यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, रोनू मजूमदार जी ने बजाया, साथ में गिटार और वाइब्रेटोन, ऐसा समाना होता। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खुशी होती है जब हमें ये सब आप लिखकर भेजते हैं, और अच्छा लगता है कि गीतों के साथ साथ जो म्यूज़िक या फिर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं उसके बारे में भी आप सोचते हैं, उसे इतने संजीदा तरीके से सुनते हैं और लिखते हैं। धन्यवाद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सितम सहने वाले को पता होता है फिर भी वो सहता है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई दूर हो या पास, पर प्यार उसके लिए हमेशा हो, कभी साथ कभी दूर, लेकिन हर परिस्थिति में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए सुरीला सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और ये अगला गीत सुनते हैं। इसमें आप मुझे बताएं कि अभिनेता और अभिनेत्री इस गीत को जिन पर फिल्माया गया है वो कौन है, वो मुझे लिख भेजिए। और साथ ही साथ हम जहां परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि मौसम किस तरह से बदल जाता है, कभी बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी थी, फिर बरसात आई तो बस बरसात ही बरसात, उससे परेशान हो गए कुछ लोग लगातार बारिश से, और अब मौसम बहुत खुशगवार है। तो ये जो बदलाव है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कुछ परिवर्तन हमें करने होते हैं अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए। कुछ ऐसे आदतें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपनी सेहत में ठीक हो, अच्छी हो, इसीलिए अपनाते हैं, हालांकि वो हमें कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें उन्हें अपनाते हैं। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपने अपनाई है अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, और जो आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छी है,

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में ये नाखुदा फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। और आपका अंदाज़ा एकदम सही है, बिल्कुल ये फिल्म आया गया है राजकिरण और स्वरूप संपत पर। बिल्कुल हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र चल रहा है जिसमें विविध भारती के गीतों की झड़ी लगी है। सचमुच सुरीले सफ़र में एक से बढ़कर एक गीत है और दिल को खुश कर देते हैं ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहाँ पर आदत की बात की गई है वहाँ सुबह सूरज के उगने से पहले जाग जाते हैं और ध्यान योग करते हैं। दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से आपका जो स्वास्थ्य है और आयु है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि समय कोई बांध नहीं सकता क्योंकि निरंतर चलता रहता है, हम सभी को समय के साथ ही चलना चाहिए। बिल्कुल, एक ऐसी आदत है जो हमें ज़रूर शामिल करनी चाहिए अपनी ज़िंदगियों में। और अक्सर हम समय की कद्र थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं, या फिर हमारी जो टाइमलाइंस होती है, जो हमने अपने आप को वक्त दिया रहता है, उस वक्त से भी हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, समय पर अपना काम समाप्त नहीं करते, जिससे कि बाद में वो जो काम है वो बस इकट्ठा होता चला जाता है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस और इन सब चीज़ों का, परेशानियों का सबब बनता है। तो ज़रूर जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, समय को किस तरह से अच्छी तरह से मैनेज किया जाए वो बहुत ज़रूरी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, बारिश का नामो निशान तक नहीं है। जी हाँ, लेकिन मौसम है, मौसम तो बदलेगा ज़रूर। मौसम निरंतर चलता रहता है और लेकिन बदलता भी रहता है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बारिश भी जल्द ही होगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुबह जल्दी उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उठते हैं क्योंकि पूजा और योग दोनों रह जाते हैं नहीं तो, और फिर पूरा दिन ऐसा लगता है कि ना तो योग किया और ना ठीक से पूजा की, और फिर दूसरे जो काम है वो सब रहते हैं। तो हालांकि इन्हें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस आदत को अपनी ज़िंदगी में शुमार किया है कि जल्दी उठना है। और ऐसा भी कहते हैं ना कि कुछ दिन, यानी कि 21 दिन तक अगर आप एक आदत को करें तो वो फिर आपकी ज़िंदगी में, दिनचर्या में शामिल हो जाती है। तो बस वो जो शुरुआत के कुछ दिन हैं, शुरुआत के कुछ स्टेप्स हैं, शुरुआत के कुछ कदम हैं, बस वो उठाने में वक्त लगता है। बिल्कुल। सुरीला सफर में अब दिल को छू देने वाला एक और गीत आपको सुनवाते हैं। वैसे तो सभी गीत दिल को छू लेते हैं, लेकिन ये गीत, यहां पर एक शब्द छुपा है

याराना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज में अनजान ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत था। आदतों की बात की जाए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अभी तो मैंने बहुत देर से आपका प्रोग्राम जो है ज्वाइन किया है, जुड़ा हूँ, कुछ तो मिस कर दिया है, तो अब समझ में आ रहा है कि वक्त से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक और श्रोता के लिखते हैं कि पहले वो बहुत ज़्यादा खर्चा किया करते थे, लेकिन अब बचत को ध्यान में रखते हुए एक आदत अपना ली है कि अब बचत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही, और कहते हैं ना कि मौके और मुसीबत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तो मौका या मुसीबत कुछ भी आए उसके लिए आप हमेशा से तैयार रहिए, और बचत तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में। एक और श्रोता लिखते हैं कि बुज़ुर्गों के लिए नियमित मॉर्निंग वॉक ही स्वस्थ रहने का एकमात्र विकल्प है, और ये प्रतिदिन कम से कम 5 किलोमीटर या अधिक से अधिक 8 किलोमीटर वॉक करते हैं।

हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सुबह उठकर छत पर बैठ जाते हैं और योगासन करते हैं, ध्यान करना अच्छा लगता है, और जब सूर्य देवता उदय होने लगते हैं तभी वो सूर्य नमस्कार करते हैं, और कुछ देर तक सूरज की किरणों को देखना भी अत्यंत सुख देता है, जो कि नेत्र ज्योति में भी बढ़ावा करता है, वृद्धि करता है। जी हाँ बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि ऐसी ही कुछ एक चीज़ें हैं जो वो पहले कतराते थे करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने छोटी छोटी आदतों से शुरुआत की है अपनी ज़िंदगी में उन्हें शामिल करने की, क्योंकि वो अच्छी है। जी हाँ, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी आदतें आप हमें बता सकते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को ना कहना। ऐसा भी होता है कि हम किसी के कहने पे वो चीज़ करते चले जाते हैं लेकिन हमारा मन नहीं होता है, या फिर हमें उतनी क्षमता नहीं होती है, लेकिन अगर अगले को बुरा लग जाए तो, रिश्ता टूट जाए तो, किसी को अपमानजनक लगे तो, हम उन चीज़ों को करते चले जाते हैं बगैर मन के और बगैर क्षमता के, तो ऐसा भी होता है। तो कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी बातें जो आप चाहते हैं कि नई पीढ़ी से भी सीखें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, वो भी आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ।

सनम तेरी कसम इस फिल्म से ये गीत था। किशोर कुमार की आवाज में गुलशन बावरा ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसीलिए तो ये गाना बना है, नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, कि हम नाना भी करते हैं लेकिन फिर भी वो काम कर लेते हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि हंसने से पीड़ा दूर होती है, तो हंसना ज़रूर चाहिए, ये एक ऐसी आदत है जिसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ज़रूर शामिल करना चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सालों पहले उन्होंने भावनगर वैशाली टॉकीज़ में याराना और कालिया एक साथ देखी थी और इन्हें ये गीत सुनकर वो याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि छू के मेरे मन को ये गीत जो था, ये प्रेम, अपनापन और भावनाओं की कोमलता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। इसकी धुन और शब्द दोनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो श्रोता के मन में मधुर यादें और भावनाएँ जगा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब आदत की बात आती है तो शाम को खाना बनाना उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो हम ये जो चीज़ है जो हम बदल नहीं सकते, उसमें कुछ और छोटा मोटा बदलाव ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमें आरामदायक महसूस हो, कुछ आराम आए, क्योंकि खाना तो बनाना पड़ेगा ना, आप नहीं तो किसी और को खाना बनाना, खाना ये सब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर कि अपनी आरामदायक तरीके से और अपनी कन्वीनियंस से, जिसे कहते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बदलाव में सब करने को तैयार हूं, परंतु विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने में कभी भी बदलाव नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार भरे संदेश के लिए, आपके इस प्यार के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें पसंद होता है वो बाकी सबको पसंद नहीं होता, जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ में गीत चलाना, बच्चों को अपना सुनना होता है और कोई और कुछ और सुनना चाहता है, तो ऐसे में जो घर है उसमें जो आवाज़ों का जो युद्ध छिड़ता है उसकी बात ही अलग हो जाती है। लेकिन फिर वो अपनी खुशी के लिए मोबाइल पर सुन लेते हैं धीमे आवाज़ में। जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो बदलाव है, छोटे छोटे जिसे एडजस्टमेंट्स कहते हैं, ये भी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में बड़े दिल वाला इस फिल्म से गीत सुन रहे थे। आरडी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते और प्यार पर आज सुरीला सफर उन्हें बहुत पसंद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये भी लिखते हैं एक श्रोता कि जो बात हमें ठीक नहीं लगती उसके लिए ना कह देते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बात जो हमें गलत लग रही है सामने वाले का दृष्टिकोण एकदम अलग होता है, सही होता है, तो हमें दोनों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सही गलत का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता लिखते हैं कि कहो कैसे रास्ता भूल गए, ये जो गीत है ये सुनते ही उन्हें अचानक ऐसा लगा ये गीत तो सोचा भी नहीं था, तो ये गीत उनके लिए बड़ा अच्छा वाला शौक था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम बिल्कुल जानबूझकर आते हैं, रास्ता भूलकर नहीं आते हैं और बार बार आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आषाढ़ की दोपहरी को गुलजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। एक और श्रोता कहते हैं उनकी सबसे बड़ी बुरी आदत यह है कि सुबह से उठकर रेडियो का कान मरोड़ते हैं और इस आदत से पूरा घर परेशान है क्योंकि उन्हें सुबह सुबह गीत सुनना पसंद नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो आपकी बुरी आदत जो दूसरों को बुरी लगती है लेकिन बुरी नहीं है, इसे बरकरार रखिए, इसे बिल्कुल भी ना बदलें।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं युवा कौशल पर। दोस्तों युवाओं के सपनों को पंख तो लग जाते हैं लेकिन उड़ान भरने में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नए दौर में युवाओं के पास अकूत की प्रतिभा है, बस उन्हें दिशा देने की जरूरत है। तकनीकी और बौद्धिक दृष्टि से आज के युवा जहां बहुत समृद्ध हुए हैं वहीं उनके कदम भटक भी रहे हैं। करियर के चुनाव में उन्हें दिक्कतें भी आ रही हैं। सोशल मीडिया भी युवाओं के मन को भटकने में अहम भूमिका निभा रही है। तो आइए आज जरा सोचें कि किस तरह हमारे युवा आगे बढ़ें और अपनी प्रतिभा को अंजाम दें।

दोस्तों, किसी ने कहा है, प्रतिभा जन्मजात हो सकती है लेकिन कौशल लगातार अभ्यास और सीखने से विकसित होता है। हर युवा अपने जीवन में सफल होना चाहता है लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए कुछ ऐसे सोपान हैं जो हर युवा को अपने व्यक्तित्व और कौशल को निखारने में मदद करते हैं। जैसे कि पहला सोपान, स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण। जब मंजिल स्पष्ट होती है तो रास्ता भी आसान हो जाता है। इसके अलावा निरंतर सीखने की आदत, बदलते समय के साथ स्वयं को अपडेट रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तीसरा सोपान है अनुशासन और समय प्रबंधन। समय का सदुपयोग ही सफलता की नींव रखता है। चौथा सोपान है संवाद और आत्मविश्वास। अपनी बात प्रभावी ढंग से रखना भी एक महत्वपूर्ण कला है। और पांचवा सोपान है तकनीकी और डिजिटल दक्षता, क्योंकि आज का युग तकनीक का युग है। और आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि सकारात्मक सोच रखें, धैर्य और लगातार अभ्यास करें। यही वो गुण हैं जो किसी भी युवा को साधारण से असाधारण बना सकते हैं।

0: लिए।
1: दोस्तों, आज का युग डिजिटल और तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था का युग है। ऐसे में रोजगार के अवसर भी तेजी से बदल रहे हैं। अब केवल पारंपरिक नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय युवा अपने कौशल के बल पर रोजगार तलाशते हैं। वो अपना स्वरोजगार भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं। यदि युवा तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वे अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता, वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में वे प्रशिक्षण पा सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिशियन, सोलर पैनल टेक्नीशियन, ड्रोन संचालक और CNC मशीन, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग जैसे तकनीकी कौशल भी आज रोजगार की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। जरूरत है उन्हें अपनी प्रतिभा जानने और पहचानने की। सरकार की ओर से भी बहुत सारे संस्थानों द्वारा बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे हैं, अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। युवाओं को चाहिए कि वे इनका लाभ उठाएं और कम समय में अच्छे रोजगार तलाश सकें। जो युवा स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहते हैं वे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सेवाएं ले सकते हैं, ई कॉमर्स, डिजिटल कंटेंट निर्माण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपना व्यवसाय भी वे चला सकते हैं। तो युवाओं के सामने रास्ते बहुत सारे हैं, बस जरूरत है कि सही रास्ता वो चुन सकें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया, सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क समुद्री उत्पाद

0: उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको
1: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
4: The Security Council has been ineffective.
5: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं।

0: नहीं उठा पाया है।
1: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 183,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को ये भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता

0: मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्यासा फिल्म से आप सुन रहे थे गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे और इसकी अगली पेशकश लीजिए सुनिए।

0: फिल्म वक्त से अभी आप ये गीत सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे श्री 420 से। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह माफ कीजिएगा दोपहर के 3 बजने को हैं। अब समय है आकाशवाणी शिमला से पहले प्रादेशिक समाचारों का। 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है।
1: चिकित्सा का अध्ययन करने वाली व्यक्तियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर के बस स्टैंड के समीप रानी झांसी पार्क में निर्मित 13 नई दुकानों का लोकार्पण और नगर निगम कार्यालय के भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये नई दुकानें स्थानीय व्यापार को बढ़ाने, छोटे व्यवसायियों के सपनों को नई उड़ान देने और अनेक परिवारों की आजीविका को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य युवाओं को आधुनिक और बाजार की मांग के अनुरूप तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार, उद्यमिता और सतत आजीविका के लिए सक्षम बनाना है। पेश है ये रिपोर्ट।
2: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है।
0: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सिरमौर जिला में गिरिनगर पॉलिटेक्निक सड़क के निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं को लेकर लोक निर्माण विभाग की कड़ी आलोचना की है। नाहन में आज रामपुर भारापुर पंचायत के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजीव बिंदल से मुलाकात कर उन्हें

0: विद्यालयों में युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों और वार्ड सदस्यों के सहयोग से ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जहां नशाखोरी या मादक पदार्थों की तस्करी की संभावना अधिक है।
1: जो अवेयरनेस कैंपेन हमारी चलाई गई है पिछले एक महीने से, लगातार कैंपेन इसमें चल रही है, जिसमें अलग अलग शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, आईटीआई हैं या पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनके कैंपस में विजिट किया है। साथ ही अवेयरनेस कैंपेन जो है किस प्रकार आपने नशे से दूर रहना है, पिछले एक महीने में 25 ग्राम पंचायत जो है वो कांगड़ा में जो रेड जोन में पंचायतें थी जहाँ पे इससे नशे का सेवन जो है या नशे की मादक द्रव्य की तस्करी है वो ज्यादा पाई गई है, तो वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन की गई है।
0: प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की धर्मशाला में 16 और 17 जुलाई को प्रस्तावित बैठक स्थगित हो गई है। ये बैठक पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की व्यस्तता के कारण स्थगित हुई बताई जाती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। आज का विषय है सेवा उत्पादन सूचकांक, भारत की सेवा अर्थव्यवस्था के नब्ज का आकलन। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है। भारत ने बीते एक दशक में अपने सांख्यिकीय और प्रशासनिक डेटा इकोसिस्टम को बहुत सुदृढ़ किया है। कुछ प्रमुख प्रगति में उच्च आवृत्ति वाले जीएसटी डेटा की उपलब्धता, निगमित सेवा क्षेत्र उद्यम के वार्षिक सर्वेक्षण की शुरुआत और डिजिटल प्रशासनिक डेटाबेस का विस्तार शामिल है, जिससे अधिक मजबूत साक्ष्य आधारित नीति निर्माण संभव हो पाता है। इन सुधारों को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन को मापने के लिए एक नया व्यापक आर्थिक संकेतक सेवा उत्पादन सूचकांक प्रस्तुत किया है। आईएसपी भारत का पहला उच्च आवृत्ति संकेतक है जो विशेष तौर पर सेवा क्षेत्र के उत्पादन के आकलन के लिए समर्पित है। इससे पहली बार औपचारिक सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का मासिक आकलन उपलब्ध होगा। वर्ष 2024-25 को आधार वर्ष मानकर तैयार किया गया ये पहला सूचकांक अप्रैल 2026 का है। इसमें सेवा क्षेत्र के 19 उपक्षेत्र शामिल हैं जो भारत के लगभग 60% सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इसे देश के सेवा क्षेत्र के बेहतर आकलन और सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई है। 19 में से 14 उपक्षेत्रों में पिछले वर्ष के अप्रैल की तुलना में 2 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि लगभग सभी अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक वृद्धि रही। सेवा उत्पादन सूचकांक की शुरुआत भारत की सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सूचकांक पूरी तरह प्रशासनिक आंकड़ों, सरकारी मंत्रालयों से प्राप्त सूचनाओं और जीएसटी रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किया गया है। इसके लिए उद्योगों और कारोबारों पर कोई अतिरिक्त अनुपालन बोझ नहीं डाला गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2024-25 को चुना गया है। सेवा उत्पादन सूचकांक के प्रमुख उपयोगकर्ताओं में राष्ट्रीय लेखा विभाग, आर्थिक मंत्रालय और इससे जुड़े विभाग, शोधकर्ता और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। नियमित मासिक परीक्षण सूचकांक लगभग 60 दिनों के अंतराल पर जारी किए जाएंगे। वर्तमान में आईएसपी संकलन के लिए कई मूल्य अपवर्तकों का इस्तेमाल किया जाता है। थोक व्यापार के लिए थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकांश अन्य क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या निकटतम मिलान वाला सीपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। आईएसपी सेवाओं की मात्रा में अल्पकालिक बदलावों पर नजर रखता है, हालांकि प्राथमिक सेवा डेटा आमतौर पर मूल्य के तौर पर एकत्र किया जाता है, इसलिए इसमें कीमतों और मूल्यवर्धन दोनों को शामिल होते हैं। अतः नाम मात्र सेवा राजस्व से कीमतों में बदलावों के प्रभावों को हटाने के लिए मूल्य की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मई 2025 में सेवा उत्पादन सूचकांक के वैचारिक और कार्यप्रणालीगत फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति में शिक्षा जगत, उद्योग संघों, मंत्रालयों और सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधि

0: प्रतिनिधित्व करने वाले विभागों के विशेषज्ञ शामिल थे। प्रस्तावित फ्रेमवर्क अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में तैयार किया गया है। बीते कुछ दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव हुए हैं। ये बदलाव आर्थिक सुधारों, तकनीकी प्रगति और वैश्विक बाजारों के साथ बढ़ते जुड़ाव से प्रेरित हैं। सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास और रोजगार निर्माण का एक प्रमुख चालक बन गया है। ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में सबसे बड़ा योगदान करता है, जो 2013-14 से सकल मूल्यवर्धित में 50% से अधिक का योगदान देता है। 2024-25 में सेवाओं का सकल मूल्यवर्धित का हिस्सा लगभग 52% से अधिक था। ये क्षेत्र भारत भर में कुल रोजगार का करीब 30% हिस्सा है और बीते 6 वर्षों में इसने करीब 4 करोड़ रोजगार निर्मित किए हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में भारत के सेवा निर्यात ने मजबूत गति बनाए रखी।
1: सामयिक चर्चा आपने सुनी। आज का विषय था सेवा उत्पादन सूचकांक, भारत की सेवा अर्थव्यवस्था की नब्ज का आकलन। वाचिक स्वर प्रभा शर्मा का था ये।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आइए एक बार फिर आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
3: पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत बदलाव हुआ है। आज इतने सारे तकनीकी कोर्स उपलब्ध हो गए हैं कि युवाओं को बेहतर करियर के लिए वो उनको अपनी रुचि अनुसार चुन सकते हैं। जैसे पहले होता था ना कि शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और बैंक जॉब के बारे में, या बिजनेस कर लेंगे या दुकान खोल लेंगे जैसा सोचा जाता था। इनके अलावा भी बहुत से कोर्स हैं, लोगों की सोच बदली है क्योंकि आज इंटरनेट जुड़ गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि युवाओं को रोजगार परक एवं तकनीकी कौशल दान करना। यानी कि समय के साथ साथ बदलाव हुआ है और हमारे युवाओं ने भी, युवतियों ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है।
4: ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, साथ ही युवाओं को कुछ कौशल सीखने चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए तो संचार कौशल, यानी अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी ढंग से कहना और दूसरों को ध्यान से सुनना। साथ ही डिजिटल कौशल, यानी डिजिटल स्किल की बात की जाए तो उसमें कंप्यूटर है, फिर इंटरनेट है, ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सुरक्षा है और नई तकनीकों का उपयोग करना। साथ ही AI की समझ, AI टूल्स की जिम्मेदारी से उपयोग और उसकी उत्पादकता को बढ़ावा देना।
3: बिल्कुल। और समस्या समाधान और तार्किक सोच, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल्स की बात की जाती है तो टीम का मार्गदर्शन करना और जिम्मेदारी निभाना भी युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। और टीम वर्क, दूसरों के साथ मिलकर काम करना और सहयोग की भावना रखना, इस तरह की जो स्किल्स हैं वो भी बहुत मायने रखती है। और समय प्रबंधन, समय का सही उपयोग कर लक्ष्य, समय पर जो लक्ष्य होता बांधा किया जाता है उसको पूरा करना होता है।
4: और साथ ही वित्तीय साक्षरता, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी बजट बनाना, बचत, निवेश और धन का सही प्रबंधन। साथ ही उद्यमिता, यानी नए विचारों को व्यवसाय में बदलने और रोजगार सृजित करने की क्षमता रखना। साथ ही रचनात्मकता और नवाचार, यानी नए विचारों पर काम करना, अलग अलग सोच को विकसित करना। और साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और संतुलित व्यवहार करना।
3: बिल्कुल। और सुनाली, इसके साथ साथ भाषा कौशल, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का ज्ञान, अनुकूलन क्षमता, यानी बदलती परिस्थितियों और नई तकनीकों के साथ स्वयं को बदलना या ढालना, प्रस्तुतिकरण और सार्वजनिक भाषण, यानी आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने अपने विचार रखना, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, अनुशासन, ईमानदारी, आत्मविश्वास, धैर्य, निर्णय क्षमता और सकारात्मक सोच को समझना। आज युवाओं के लिए केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे कौशल भी आवश्यक हैं जो उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम और सफल बना सके।
4: और वैसे ही होता है ना कि आजकल पढ़ाई के साथ साथ माता पिता जो बच्चे 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड में आ गए कि इस तरह के उन्हें कोचिंग भी के लिए भी भेजते हैं, ताकि जो बचपन से ही ये सारी क्षमताएँ वो डेवलप लेते हैं, अगर विकसित कर लेते हैं तो आगे चल के उन्हें नौकरी में बहुत फायदा होता है। और इसी तरह की बात हमारे साथी ने भी लिखा है कि विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, अच्छे कार्य और उद्यम के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल से प्रशिक्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और

0: वर्ष इस दिन को मनाने की घोषणा की गई।
1: बिल्कुल। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि आज के समय में केवल शैक्षिक डिग्री ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक कौशल भी सफलता की कुंजी बन चुके हैं। कंप्यूटर, संचार, तकनीकी शिक्षा, उद्यमिता और डिजिटल कौशल युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। भारत में स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे पहले इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विश्व कौशल दिवस का संदेश है, कौशल ही आत्मनिर्भरता और उज्जवल भविष्य की पहचान है। तो अपनी स्किल्स को
0: डेवलप करना चाहिए।
1: और एक साथी ने और भी लिखा है कि कुकिंग स्किल्स से तकनीकी का उपयोग करके भी आप लाभ उठा सकते हैं।
0: बहुत लाभ उठा रहे हैं। कितनी सारी गृहिणियां जो है वो अपनी कुकिंग स्किल, पहले जो पुराना जमाना हुआ करता था ना कि हम सिर्फ घर में ही खाना बनाते थे, पर आज जो अलग अलग प्रांत के लोग जो हैं वो दूसरे दूसरे प्रांत के डिशेस खाना पसंद कर रहे हैं, और जिससे जो गृहिणियां हैं जिनमें कुकिंग की स्किल है उन्हें भी रोजगार मिल रहा है।
1: बिल्कुल। और जो हमारी जो लड़कियां भी हैं वो भी अच्छी अच्छी क्वालिफाइड हैं, एजुकेशन अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छी अच्छी डिशेस बना के कुकिंग स्किल्स को बढ़ावा दे करके कुछ ना कुछ अपना आर्थिक रोजगार, अपने लिए आर्थिक धन
0: कमा रही हैं।
1: तो कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी गुण है, जो भी शौक है, आप उसको आगे बढ़ाइए और अपनी आर्थिक मदद आप परिवार को भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है।
0: यानी बस अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि हमारा ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट है जिसमें हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं, और हम अब आगे बढ़ेंगे गीत के साथ।
1: जी।

0: तो सुनाली बहुत प्यारा सा ये गीत था। तो जैसे इन्होंने कहा कि तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, तो इसी तरह हम सखियों में सखी सहेली में भी हम दोनों सखियों का भी ऐसे ही रहता है कि एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं।
1: और जब हम साड़ी पहनते हैं
0: फिर भी उस वक्त दूसरे की तारीफ से उस समय भी एक दूसरे की तारीफ करते हैं
1: और हमें तालमेल भी बहुत बिठाना पड़ता है।
0: बिल्कुल। देखो आज हम बात करने वाले हैं अरनी सिल्क साड़ी की, जिसे अरनी या अरनी भी कहा जाता है। अरनी सिल्क साड़ी भारत के प्रसिद्ध पारंपरिक रेशमी साड़ियों में से एक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के अरनी नगर में किया जाता है। ये साड़ी अपनी बेहतरीन बुनाई, शुद्ध रेशम, आकर्षक रंगों, टिकाऊ गुणवत्ता और शानदार जरी के काम के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान मानी जाने वाली ये साड़ी आज देश विदेश के फैशन प्रेमियों की भी पसंद बन चुकी है।
1: और अरनी में रेशमी साड़ियों की बुनाई का इतिहास लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद के शासकों के समय इस क्षेत्र में रेशम उद्योग को विशेष संरक्षण मिला था और समय के साथ यहाँ के बुनकरों ने अपनी पारंपरिक कला को नई तकनीकों के साथ जोड़ा, जिससे अरनी सिल्क साड़ियों की अलग पहचान बनी है। आज भी अरनी में अनेक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी शिल्प से जुड़े हुए हैं और ये कला केवल आजीविका का साधन नहीं है बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत भी है।
0: बिल्कुल। और अरनी सिल्क साड़ी का निर्माण कई चरणों में पूरा होता है, जैसे रेशम का चयन, उच्च गुणवत्ता वाले मलबेरी शहतूत रेशम का उपयोग किया जाता है, धागों की रंगाई, रेशम के धागों को विभिन्न आकर्षक और टिकाऊ रंगों में रंगा जाता है, ताना बाना तैयार करना, करघे पर धागों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया जाता है और जरी का उपयोग असली या उच्च गुणवत्ता वाली जरी के बॉर्डर और पल्लू बुने जाते हैं
1: और साथ ही हाथ करघे पर बुनाई की जाती है। अनुभवी बुनकर कई दिनों तक मेहनत करके एक साड़ी तैयार करते हैं और तैयार साड़ी की मजबूती, रंग और डिज़ाइन की जांच की जाती है और एक उत्कृष्ट अरनी साड़ी बनने में मंजरी 7 से 20 दिन तक और जबकि जटिल डिज़ाइन वाली साड़ियों में इससे भी अधिक समय लग सकता है। और इस साड़ियों में चौड़े और आकर्षक जरी बॉर्डर होते हैं जिनमें मंदिर, मोर, आम, कमल, बेल बूटे और ज्यामिति डिज़ाइन होती है और ये साड़ी वज़न में बहुत हल्की होती है और जिसके कारण लंबे समय तक पहनने में आरामदायक होती है, साथ ही मजबूत बुनाई के कारण वर्षों तक सुरक्षित रहती है।
0: और तमिलनाडु में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और पारिवारिक आयोजनों में अरनी सिल्क साड़ी विशेष रूप से पहनी जाती है। ये शुभता, समृद्धि और पारंपरिक भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। दक्षिण भारतीय दुल्हनों के विवाह संग्रह में इसका विशेष स्थान होता है सोनाली। और अरनी के हजारों बुनकर इस पारंपरिक उद्योग से जुड़े हैं। वे आधुनिक डिजाइनों को अपनाते हुए भी अपनी प्राचीन बुनाई शैली को संरक्षित किए हुए हैं। उनके धैर्य, मेहनत और कलात्मक कौशल के कारण ही अरनी सिल्क साड़ी विश्व भर में सम्मान प्राप्त कर रही है
1: और साथ ही स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। भारत के विभिन्न

0: राज्यों और विदेशों में इन साड़ियों का निर्यात होता है और तमिलनाडु के हस्तकरघा उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये साड़ियाँ सशक्त बनाती है। महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियाँ भी इस उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अन्य साड़ियों को केवल ड्राई क्लीन करवाना चाहिए और सूती कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और सीधे धूप में लंबे समय तक ना रखें, यानी साड़ियों को धोना बिल्कुल नहीं है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी सी जानकारी दी सोनाली तुमने। और समय समय पर साड़ी को मोड़ बदलते रहने, जो तह होती है उसको बदलते रहना चाहिए ताकि रेशम और जरी सुरक्षित रहे। अरनी सिल्क साड़ी केवल एक परिधान नहीं बल्कि भारतीय हस्तकरघा परंपरा, उत्कृष्ट शिल्प कला और सांस्कृतिक गौरव का जीवंत प्रतीक है। इसकी बारीक बुनाई, शानदार रंग संयोजन और आकर्षक जरी का काम इसे भारतीय रेशमी साड़ियों में विशिष्ट स्थान दिलाता है।
0: और ये साड़ी हमें उन कुशल बुनकरों की अथक मेहनत और सदियों पुरानी कला की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी विरासत को आज भी जीवित रखा है। इसलिए अरनी सिल्क साड़ी भारतीय संस्कृति और हस्तशिल्प की एक अमूल्य धरोहर मानी जाती है।
1: और हम सभी सखियां जो है वो अपने अपने वार्डरोब में चेक कर ले कि ये साड़ी है कि नहीं है,
0: और नहीं है तो खरीद ले।
1: और फिलहाल ये सुने, गीत
0: सुनते हैं।

0: तो सुनाली देखो कितनी अच्छी सी बातें इस गाने में भी थी, है ना,
1: कि जब हमारी कोई सहेली साड़ी पहन के जाती है तो अब अगर हम बोले कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो वो कितनी खुश हो जाती है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो आज भी जब आई थी तो हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे ना। साड़ी तो नहीं लेकिन हाँ कुर्तों पे हम लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। ऐसी बातें हो जाती हैं जब सखियां मिलती हैं।
1: यानी जो छोटी से जो तारीफ, जो छोटा सा शब्द है ना, ये हम सभी का मनोबल बहुत कई गुना बढ़ा देता है। तो बीच बीच में से तारीफ करते रहना चाहिए।
0: तारीफ करने के लिए भी देखो बड़ी हिम्मत हमारी हिम्मत भी बढ़ जाती है। और हम अभी हम लोग बात भी करेंगे हिम्मत के विषय में कि हिम्मत कैसे अपने अंदर रखनी चाहिए कि हर मुसीबत का सामना भी हम अच्छे से कर सके। तो हमारे बहुत सारे विचार आ ही चुके हैं। तो अब अंतराल का समय हो चुका है, तो लेते हैं अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली
1: सहेली, और हम लोग बात करने वाले शब्द हमारा विचार आपका, इसमें हम लोग हिम्मत के बारे में बात करने वाले हैं। तो सोनाली, देखा जाए जब भी हम हिम्मत की बात करते हैं
0: जी,
1: तो केवल कठिन समय में आगे बढ़ने का नाम हिम्मत नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी है। और हर जगह हिम्मत दिखाना समझदारी नहीं होती, जहाँ विवेक और धैर्य की आवश्यकता हो वहाँ केवल साहस नहीं बल्कि संयम भी जरूरी होता है। हिम्मत कहाँ कहाँ रखनी चाहिए, सच्चाई का साथ देने में, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, गलत के खिलाफ आवाज उठाने में, अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, यहाँ पर भी हमें हिम्मत उठानी, हिम्मत दिखानी चाहिए। और अपने सपनों को पूरा करने में भी हिम्मत दिखानी चाहिए, असफलताओं से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, है ना?
0: ये तो बहुत सही बात आपने कही। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो दीपक है जो अंधेरों में भी जलता है, हर मुश्किल के सामने सीना तान कर चलता है, राहों में चाहे कितने भी तूफान आ जाए हिम्मत वाले कदम पीछे नहीं हट पाए, गिरकर उठना फिर आगे बढ़ जाना, सपनों को सच करने का यही अफसाना है, जो डर को अपनी मंजिल के बीच ना आने दे वही इंसान सफलता का आसमान छू ले, हिम्मत से ही जीवन में नई राहें बनती है, इसी से जीत की खुशियां और उम्मीदें बनती हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जिसके पास हिम्मत होती है उसके लिए असंभव भी एक दिन संभव बन जाता है। हिम्मत वो आवाज है जो हर हार के बाद भी कहती है एक बार और कोशिश करो, ये तूफानों से लड़ना नहीं बल्कि उनके बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना सिखाती। बहुत सुंदर सी बात लेकर हमारे साथियों ने भेजी है।
0: एक साथी कहते हैं कि हिम्मत का अर्थ केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि एक मानसिक और आत्मिक शक्ति है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से हार मानने से इनकार कर देता है तो वही उसकी असली हिम्मत कहलाती है। ये डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और संघर्ष हमें नया अनुभव देते हैं। हिम्मत रखने वाले लोग इन अनुभवों से अपने भविष्य की नई कहानी लिखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार आपके भीतर हिम्मत की एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत शब्द का अर्थ साहस, बहादुरी और हौसला होता है। हम बोलचाल की भाषा में इसका बहुतायत प्रयोग करते हैं, हम तो हिम्मत हार गए, या इस फैसले से हमारी हिम्मत बढ़ गई। ये व्यक्ति कि वो मानसिक शक्ति है जो उसे किसी कठिन परिस्थिति, डर या खतरे का निडरता से सामना करने और बड़े संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा देती है। डर पर काबू पाने की क्षमता साहस को दर्शाता है। किसी मुश्किल काम को करने का पक्का इरादा, जब कोई दिलेरी पराक्रम की बात होती है, इसे पराक्रम, दिलेरी, शौर्य, जीवट भी कहा जाता है।

0: एक साथी कहते हैं, एक मुहावरा है, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। अगर हम कोई असंभव कार्य करने की हिम्मत करते हैं तो खुदा यानी ईश्वर ज़रूर मदद करेगा। बस आपको खुद पर विश्वास रखते हौसला बढ़ाए रखना है। फिर वो व्यापार करने वाले हो, कारोबारी हो, पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, हिम्मत से जीवन नया पार लगा सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो आंतरिक शक्ति है जो इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। ये डर को खत्म नहीं करती बल्कि डर की मौजूदगी में इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। इसी से इंसान को सफलता मिलती है। हिम्मत वो सीढ़ी है इनको लिखना है, जो हर हार को भी जीत में बदल देती है। बहुत सुंदर सी बात है कि हिम्मत अगर होगी, अगर उसकी सीढ़ी पर हम चढ़ गए तो हमारी हार जो होती है ना, वो भी जीत में बदल जाती है। और हिम्मत तो हमें देखो दिखानी पड़ती है। अभी कोई नया काम हम सीखते हैं, नई चीज़ सीखना चाहते हैं, जैसे वाहन चलाना, स्कूटर चलाना या कार चलाना है, तो हमें हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है, तभी हम सीख सकते हैं।
0: बच्चों को भी हमें हिम्मत देना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: जब नए नए बच्चे चलना सीखते हैं तब भी डरते हैं, पर माँ जब उसे थाम लेती है कि डरो नहीं, हम हैं साथ में, तो वही हिम्मत उसकी ताकत बन जाती है।
1: बिल्कुल। इसी तरह बच्चे जब पढ़ने वाले होते हैं, स्कूल जाने वाले होते, तो वो किताबें देख के डरते हैं, विषय देख के डरते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, तो उन्हें हिम्मत दिखानी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि देखो अभी हम समझाते हैं, तुम समझ जाओगे, डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, दिमाग पर जोर मत दो, आराम से सुनो। ऐसी बातें करते तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है, तो वो हर चीज कर लेते हैं।
0: परीक्षा के समय में भी हिम्मत जुटाते हैं ना हम, हिम्मत बढ़ाते हैं बच्चों की, विद्यार्थियों की, देखो घबराओ नहीं, परीक्षा अच्छे से देना। अगर किसी ने पीठ पर हाथ थपथपा दी कि देखिए तुम अच्छा कर रहे हो, परिणाम अच्छे ही होंगे, और अगर परिणाम इधर उधर हो भी गए तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इस तरह से अगर कोई हमारे इर्द गिर्द हिम्मत बढ़ाने वाले लोग होते हैं ना, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होता है।
1: बिल्कुल सुनाली। और इसी के साथ साथ हमारे एक साथी और लिखते हैं, हिम्मत साहस हौसला इसके कई रूप हैं। बड़ी से बड़ी स्थिति को डट कर सामना करना हिम्मत का काम है। किसी भी गलत बात के लिए आवाज उठाना बहुत हिम्मत का काम है। अपने मन की ना सुनकर सही राह पर चलना भी हिम्मत का काम है। कोई बात किसी की ना पसंद आए, सही ना लगे, उसको मना करना, ये भी बहुत हिम्मत की बात है। हिम्मत के रूप तो कई हैं। बचपन में तो मम्मी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी। अगर गलती करते थे तो डांट पड़ जाती, तो चुप रहकर सुन ही लेते थे। हिम्मत नहीं हो तो सर नहीं होती थी सर उठाने की,
0: यानी पुराने जमाने की बात ही कुछ और हुआ करती थी।
1: देखिए मम्मी ही नहीं भाई, पापा लोग से, पिताजी लोग से भी बड़े
0: उनकी आंखों से ही डरते थे,
1: तो ये बात थी कि उस समय हम लोग अगर वो कुछ कहते थे तो हिम्मत नहीं होती थी कि हम उन्हें जवाब दें। आजकल पलट के जवाब सुनने को मिल जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो ये तो एक ऐसी आदतों की बात होती है, लेकिन हिम्मत अगर आपके अंदर है, हौसला है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे फौजी भाइयों और सिपाहियों, सैनिकों में बहुत हौसला होता है, हिम्मत होती है कि सरहद पर खड़े होकर वो दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं और देश के प्रति अपनी हिम्मत और जज्बे को दिखाते हैं। तो उनको हमें बहुत बहुत सलाम नमस्कार करना चाहिए
0: और गीत सुनना चाहिए।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई देखो सोनाली, अब हमारी बात होने वाली है पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र। इस पर हमारे साथी लिखते हैं कि इसका जवाब एक लाइन में नहीं है। पड़ोसी हो सकते हैं सच्चे मित्र, पर होते ही हैं, ऐसा जरूरी नहीं। रात 2 बजे तबीयत बिगड़े उस समय दोस्त और रिश्तेदार फ़ोन पर होंगे, पर पड़ोसी दीवार के उस पार हर दिन की छोटी छोटी ज़रूरतें आपसी रिश्ते को गहरा करती हैं। लेकिन यही पड़ोसी मित्र कब नहीं बन पाते, जब सिर्फ दीवारें साझा हों पर दिल नहीं। ईर्ष्या, राजनीति, शोर शराबा या दखलंदाजी से पड़ोस का रिश्ता खराब भी हो सकता है। तब वो सिर्फ फ्लैट नंबर बनकर रह जाते हैं। पड़ोसी अपने आप में मित्र नहीं होते, उन्हें मित्र बनाया जाता है। एक नमस्ते, एक कप चाय, त्यौहार पर एक प्लेट मिठाई, बस इतनी पहल से दीवारों के बीच का रिश्ता भी दिल का रिश्ता बन जाता है। वाकई में जब कोई दिक्कत होती है तो एक दूसरे के ही काम आते हैं हमारे पड़ोसी, जो भी होते हैं, सब किसी के भी पड़ोसी हैं, वो एक दूसरे के काम ही आते हैं। तो उनके साथ अपना संबंध बना के रखिए, क्योंकि रिश्तेदार तो दूर होते हैं, अचानक आपको दिक्कत आएगी।

0: तो वो ही आपके काम आएंगे, और आप उनको दिक्कत आती तो आप उनके लिए मदद के लिए खड़े हैं, है
1: हमारे
0: ना।
1: एक साथी लिखते हैं मंजरी कि ये सच है कि पड़ोसी हमारे लिए रिश्तेदार से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपदा के समय रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। हमारे साथ तो पड़ोसी के संबंध को प्रगाढ़ बनाने में उनके सबसे छोटे बच्चे ने बड़ी भूमिका निभाई है। 3-4 महीने से लेकर अब 1.5 साल का होने तक वो बच्चा हमारे साथ ऐसा घुल मिल गया है कि अब अपने घर से ज़्यादा हमारे साथ रहता है। सुबह, दोपहर, शाम, देर रात कभी भी दादी बाबा कहते हुए दरवाजे पर आ जाता है, और हम भी उसके भोलेपन के व्यवहार से ऐसे बन चुके हैं कि सब काम छोड़कर उसे बुला लेते हैं, और फिर हमारे घर में उसकी छोटी छोटी शरारतों से एकदम से रौनक आ जाती है। उस बच्चे ने अपने निश्चल और नटखट प्रेम से हम दोनों परिवारों को एक साथ बांध दिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: और एक साथी और लिखते हैं कि पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र ही नहीं बल्कि सच्चे रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी हमारी मदद के लिए पहुँचते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वहाँ से लौटने के बाद बहुत परहेज वाला खाना खाने को कहा गया। मेरे घर के सामने वाली आंटी ने रोज़ कुछ ना कुछ बनाकर मेरे लिए भेजती थी ताकि मेरी मम्मी को ज़्यादा परेशानी ना हो। मना करने पर बोलती थी कि जब मुझे ज़रूरत होती है तब तुम भी तो जी जान से सेवा करती हो। वाकई में एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार रहेगा तो आपका घर परिवार और आपके अगल बगल से लेकर पूरा मोहल्ला भी खुशहाल रहेगा, क्योंकि सबके पड़ोसी ऐसे
1: जी।
0: हो जाएं तो।
1: एक साथी ने लिखा है कि पहले सगो पड़ोसी, सगे संबंधी तो दूर दूर रहते हैं, इस बात पर यह कहावत पड़ी होगी कि सगा पड़ोसी, इसलिए जो अच्छे संबंध हो तो वो ही पहले सुख दुख में भागीदार बनता है, इसलिए पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि एकल या विभक्त कुटुंब पद्धति में अब पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र तथा रिश्तेदार बन रहे हैं। जी हाँ, कभी कभी वो हमारी प्राइवेसी को जरूर डिस्टर्ब कर देते हैं, परंतु सुख दुख और आपातकालीन संकट में वो ही तो सबसे पहले हमारे काम आते हैं, सहारा बन जाते हैं। बदलती समाज व्यवस्था में पड़ोसी जीवन का अहम हिस्सा है, त्योहारों की रौनक और सुख दुख के सच्चे साथी बन गए हैं। थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में होते हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए। दरवाजे से दरवाजा जुड़ा है, जुड़ा रहे दिलों का तार, खुशी गम और हर मुश्किल में काम आते हैं पड़ोसी मित्र बार बार। क्या बात है।
1: एक साथी लिखते हैं पड़ोसी हमारे सबसे निकटतम सहयोगी और सच्चे मित्र होते हैं। आपातकाल में दूर बैठे रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही उपलब्ध होते हैं। एक अच्छा पड़ोसी सुख दुख साझा कर जीवन को सुरक्षित बनाता है। और पड़ोसियों के या पड़ोस धर्म के बारे में हम अधिक पढ़ सकते हैं। यदि आप पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या आप जानना चाहेंगे एक दूसरे के साथ तालमेल और सद्भाव कैसे बढ़ाएं? त्योहारों और समारोहों में सहयोग के तरीके, किसी भी अनबन को सुलझाने के उपाय हम जान सकते हैं। भैया एक उसमें कटोरी में डाल के कुछ मिठाई दे दी,
0: हाँ।
1: तो पड़ोसी भी ये जो संबंध जो है ना प्रगाढ़ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये छोटा सा बर्तन।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक साथी लिखते हैं, सोनाली, पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र हैं। अब ये बहुत अचंभित और कहानी सुनने जैसी बात लगती है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी आज भी हैं, पर आज की जो जेनजी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। प्राइवेट कॉलोनी में अब ये दूरियाँ बढ़ गई हैं, फ्लैट और सोसाइटी में ये ज़्यादा दिखाई देती। मैंने कोरोना काल में प्राइवेट कॉलोनियों में को भी देखा और सोसाइटी और फ्लैट के सिस्टम में भी देखा है। फ्लैट वाले बहुत अच्छे पड़ोसी साबित हुए प्राइवेट कॉलोनियों के हिसाब से। हमारे ज़माने की वो पड़ोसी नहीं कि किसके घर की दाल में आज कौन से मसाले की छौंक पड़ी है, वो भी पता चल जाता था, और कहने पर बड़ी सौंधी सुगंध आ रही है तो कटोरी दाल भी आ जाती थी। या अगर कोई 2 दिन नहीं दिखाई दिया तो तीसरे दिन आपके घर आकर उनसे पूछ लिया गया, आप 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात है। ये भावनात्मक लगाव खत्म हो गया है जो सचमुच चिंतनीय है। बहुत इन्होंने पते की बात,
1: बहुत सही बात की, और खासकर शहरों में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। छोटे शहरों में और गांवों में अभी भी लोग पड़ोसियों के घर हक से जाकर बैठते हैं, हक से खाना खाते हैं, वहीं पर रह भी जाते हैं, पर यहाँ पे शहरों में बहुत ही गंभीर परिस्थिति आ चुकी है। पर इस गंभीर परिस्थिति को हम हल्का करेंगे गाना सुनकर।
0: जी।

0: होगा तेरे घर के सामने।
1: तो भाई देखो सुनाली, तुम आई तो मैं सोच रही थी आज तो तुम पक्का मुझे मकई के कुछ कुछ व्यंजन खिलाओगी, लेकिन तुम लाई नहीं। चलो हम रेसिपी पढ़ के संतुष्टि
2: भाई बारिश तो गिरने दो, उसके बाद में हम कुछ, बारिश गिरने के बाद ही मकई खाने का आनंद बढ़ता
1: है ना जी। चलो रेसिपी पढ़ के अपनी भूख को शांत कर लेते। हमारे साथी ने लिख कर भेजा है मकई की चाट, इसकी सामग्री नोट कीजिएगा। एक डेढ़ कप या दो कप स्वीट कॉर्न या देसी भुट्टे के दाने। सब्जियों में आपको लेना है एक छोटा प्याज, एक टमाटर और एक हरी मिर्च। और मसाले में आपको लेना है एक छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और नमक आपके स्वाद के अनुसार, काला नमक या आप सादा नमक भी ले सकते हैं। और इसमें एक बड़ा चम्मच मक्खन लेना है आपको, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको बनाने की विधि है कि आप भुट्टों को उबाल लें एक पैन या बर्तन में पानी डाल करके, कॉर्न के दाने आप 5 से 10 मिनट उबालिए और इसको छान लीजिए। तड़का लगाने का लिए आपको एक पैन में मक्खन गर्म करना है, उसमें उबले हुए कॉर्न 1-2 मिनट के लिए भूने। आप बिना भुने भी इसकी चाट बना सकती हैं। और इसमें मसाला मिलाएं जो आपने फ्राई किया है, उसको मसाला मिलाएं। एक बड़े कटोरे में गर्म सामान कॉर्न ले और इसमें सभी कटी हुई सब्जियां, प्याज टमाटर हरी मिर्च और मसाले, चाट मसाला जीरा पाउडर लाल मिर्च नमक आदि डालें, मिला लें। नींबू का रस डाल दें, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से आप मिलाएं और ये आपकी चटपटी मसालेदार कॉर्न चाट तैयार होगी।
2: यानी जो लोग डाइटिंग करते हैं वो भी खा सकते हैं।
1: बिल्कुल खा सकते हैं, अनार के दाने भी आप डाल सकते हैं और पड़ोसियों को चाहते हैं आप, है ना।
2: और मकई का हलवा बनाने की विधि लिखकर भेजी है कि ताज़े नरम कच्चे भुट्टे के दाने को मिक्सी में से पीस ले, फिर एक पैन में घी गर्म करके भुना हुआ मकई का पेस्ट डाले। अब तब तक भुने जब तक वो पैन ना छोड़ने लगे, अर्थात पैन में चिपके नहीं। फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर गाढ़ा होने तक पकाए। तैयार है पौष्टिक मकई का हलवा। ऊपर से मेवे डालकर हलवा सर्व करें। और इसमें अगर आपने ज्यादा दूध डाल दिया और थोड़े से दाने ऐसे उबले हुए बिना पीसे हुए दाने डाल दे तो मकई की खीर भी बन सकती है।
1: क्या बात है। और एक साथी लिखती है कि मेरे घर मकई की सब्जी बनती है, वो कुछ इस तरह से कि सबसे पहले बिना छिलके वाले साबुत मकइयों को हल्दी नमक पानी के साथ कुकर में उबाला जाता है। ठंडा होने पर इसके 1 से 3-4 पार्ट में इसको काटा जाता है। उबली हुई मकैया के टुकड़े प्याज आलू टमाटर की सब्जी में मिलाकर 4 मिनट तक पकाया जाता है ताकि सब्जी का मसाला मक्की के टुकड़ों में आ जाए। ग्रेवी गाढ़ी या पतली आप चाहो तो इसे रख सकते हो। और मकई के दानों की आप बेसन में मिला करके पकौड़े बना लीजिए, है ना।
2: और एक है ना, सखी ने लिखा है कि भुट्टे के दाने का छिलका या चीला, यानी दाने को बारीक पीस ले। अब इसमें कटी हरी मिर्च, नमक, 1-2 चम्मच बेसन या चावल का आटा या सूजी बारीक कटा प्याज मिला ले और तवा पर इसका चीला बनाए। ये बहुत पतले नहीं बनते, थोड़े मोटे रहते हैं। अगर इसमें आप प्याज नहीं मिलाना चाहते तो बिना प्याज के बहुत अच्छी लगती है। चटनी या दही के साथ खाते, पर मैं तो कहूँगी किसी की ज़रूरत नहीं, खुद ही बहुत स्वादिष्ट और मीठे लगते हैं। और मकई ना दो तरह की आती है, एक पीले रंग की मकई होती है और एक सफ़ेद। तो पीले रंग के जो दाने होते हैं ना मीठे होते हैं और सफ़ेद वाले जो होते हैं इतने मीठे नहीं होते, यानी फीके होते हैं। तो जब नमकीन डिश बनाना होता तब सफ़ेद वाले मकई का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छी।
1: तुमने बहुत अच्छी सी टिप्स दी है, तो बड़ा स्वाद आ गया इन सब रे व्यंजनों को सुन करके, देख करके और पढ़ करके। तो अब चलो एक गीत सुन लिया जाए।
2: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली, मकई के सूप के बारे में भी बता देते कि मकई के दाने इसकी लेना है आपको, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर लेना है और सब्जी को हल्का भूने पानी में डालकर उबालें, थोड़ा कॉर्न पीस कर मिलाएं ताकि सूप गाढ़ा हो जाए और गर्मा गर्मा आप इसको परोसें।
1: तो यानी अभी जब सर्दियों के दिन आते हैं या फिर जब झमाझम बारिश गिरती है, जब वातावरण एकदम से ठंडा हो जाता है, उस वक्त ये गर्म गर्म सूप जो है ना, ये बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत भाता है। भले ही थोड़ी सर्दी हो जाए ना, उस वक्त भी ये सूप दे दे तो बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किचन में जाते हैं, कुछ नई चीज़ हमें बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें अपना कौशल भी दिखाना पड़ता है और साथ में हिम्मत भी बहुत दिखानी पड़ती है कि जो हम बना रहे हैं
1: जी
0: वो सही बनेगा और लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और जब अच्छी चीज़ बनती है तो लगता है थोड़ी सी पड़ोसी को दे दे। तो यानी कहना चाहिए कि हमें आज के सारे विषयों को मिलाकर एक अच्छी नई शुरुआत करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों को बढ़िया बढ़िया कुछ ना कुछ खिलाते
1: रहना चाहिए। और श्रोताओं को कहते हैं हम धन्यवाद और लेते हैं इजाज़त। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली।

0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: बस थोड़ी ही देर में।

0: दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक साहित्यकार को जो नाटक भी लिखते हैं, व्यंग्य भी लिखते हैं, कहानियां और उपन्यास भी लिखते हैं। विवेक रंजन जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, विविध भारती के माध्यम से आपको, विविध भारती परिवार को और तमाम श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
2: बड़ा आत्मीयता का भाव, सारस्वत भाव।
1: क्या
2: और जिस ढंग से नाटक पर मुझे अभी साहित्य एकेडमी, मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी से अवार्ड भी मिला और विविध भारती की पहचान हवा महल से है मेरे जहन में। बचपन से हम लोग 8:15 का इंतजार करते थे और हवा महल का बहुत बड़ा
1: अब 8 बजे का समय हो गया।
2: 8 बजे का हो गया। जी हाँ
1: जी। और भी जो बहुत सारे पुराने प्रोग्राम है, छाया गीत, संगीत सरिता, वो अभी भी ब्रॉडकास्ट?
2: जी हाँ जी हाँ, छाया गीत नियमित सुनता था मैं। हाँ। और कहीं हम लंबी यात्रा पर जाते हैं तो FM विविध भारती ही लगा लिया जाता है। और आपको बताऊं ममता जी, हाँ। कि एक दिन बड़ा रोचक प्रसंग हुआ। हाँ। मेरी जो श्रीमती जी हैं उन्होंने कहा आज खाना नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया?
1: अच्छा।
2: बोले FM रेडियो नहीं बज रहा है।
1: अच्छा।
2: और मैं विविध भारती सुने बगैर खाना नहीं बनाऊंगी। तो ये विविध भारती की लोकप्रियता है और आप जैसी रेडियो सखी, आपकी बहुत सारी छाया गीत मैं बड़े अच्छे से सुनता रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आज आपसे बातचीत हो रही है। आप कहानीकार भी हैं, आप उपन्यासकार भी हैं और साहित्यकार हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपके बारे में चर्चा करनी है तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। हम सबसे पहले विवेक रंजन जी जानना चाहते हैं आपसे कि ये जल्लाद क्या है, कहाँ से विचार आया ये नाटक लिखने का, इसके लिए पुरस्कार भी मिला आपको?
2: जी हाँ, मुझे मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी ने अभी रिसेंटली जो साहित्य एकेडमी के पुरस्कार डिक्लेयर किए उसमें हरिकृष्ण प्रेमी नाट्य पुरस्कार 51,000 रुपये का है वो घोषित हुआ है मेरी नाट्यकृति जलनाद पर। और जलनाद कैसे लिखा मैंने, मैं आपको बताऊं, विश्व जल वर्ष था UNO का, तो नार्डिक देशों के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें मुझसे ये चाहा गया कि मैं पानी के महत्व को लेकर के कोई पौराणिक आख्यानों को जोड़ करके एक नाटक तैयार करूं।
1: जी।
2: तो मैंने ये विभिन्न जो हमारे धार्मिक या कहें आध्यात्मिक चिंतन वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि जैसा आप जानती हैं ममता जी कि इस सृष्टि का उदय भी पानी से हुआ और जो अंत की परिकल्पना है आध्यात्मिक रूप से वो भी जल प्रलय से है।
1: जी हाँ।
2: आप जानती हैं कि हमारे ऋषि मुनि पानी से

0: मंत्र उच्चारित कर श्राप दे दिया करते थे, वरदान दे दिया करते थे। और न केवल भारतीय मनीषा के उसमें, हम इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें तो
1: जल ही जीवन है,
0: जल ही जीवन है, पानी का लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें आज भी कितने सारी कंट्रीज हैं जहां पर शुद्ध पेयजल

0: बिजली की कमी या कोई के कारण से पानी नहीं बन पाएगा तो जीवन के लिए संकट उपस्थित हो सकता है। तो पानी का महत्व निर्विवाद है।
1: तो इसमें ये जो नाटक है ये जलनाद, इसमें कैसे पात्रों का चयन किया आपने, संवाद कैसे गढ़े, कहाँ से आपके पास आइडिया आया,
0: इसमें
1: क्या रिसर्च किया?
0: जी हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च करी और पानी से संबंधित जितने दृष्टांत मुझे मिलते चले गए उनको नाट्य रूपांतर में मैं बदलता रहा। तो 12 इसमें नाटक हैं। जैसे मैं एक कविता का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करूं जो मैंने ऋग्वेद से, जो हमारा एक ऋग्वेद का मंत्र था जिसमें जल देवता को संबोधित करते हुए बात की गई है। तो मैं उससे एक जो उसका हिंदी मैंने भाव अनुवाद किया है, एक अंतिम पैरा पढ़ देता हूँ। हे जल के देवता, मेरा आचरण अब तेरे जैसा हो, तेरा रसायन मेरे पोर पोर में समा जाए, तू प्रवाहमान अग्नि है, तू आ मुझे तेजस्वी बना, वर्चस्व प्रदान कर। जिस प्रकार हम जानते हैं ये ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, उसका हिंदी अनुवाद है अंत में मैंने किया कि पानी की एक बहुत बड़ी गुण है कि वो जिस पात्र में रखा जाता है वह रेप आकार ले लेता है। पानी का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसमें जो रंग मिला दिया जाए वह उस रंग में रंग जाता है। तो ये एक इसका अगर हम बौद्धिक विवेचन करें तो ये हमारे लिए जीवन सूत्र भी है।
1: जी जी, बहुत बढ़िया। और आपने व्यंग्य भी लिखे हैं।
0: जी हाँ।
1: और एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं, तो हरिशंकर परसाई जी को आपने पढ़ा है, उनसे क्या कुछ पाया, क्या कुछ सीखा आपने?
0: ममता जी, व्यंग के ट्रिपॉइड मध्य प्रदेश में हैं।
1: जी,
0: शरद जोशी जी बाद में उनकी कर्मभूमि मुंबई रही, वो भोपाल से थे।
1: उनका प्रतिदिन एक कॉलम आता
0: जी
1: था।
0: हाँ। और हरिशंकर परसाई जी का एक कॉलम आता था सुनो भाई साधो
1: जी।
0: तो मैं ये सब पढ़ते हुए अखबारों में बड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार साहित्यिक रहा है तो मुझे पढ़ने में बहुत रुचि थी, तो ये सब पढ़ा मैंने। रविन्द्रनाथ त्यागी जी वो भी मध्य प्रदेश के थे।
1: जी जी जी।
0: और जो एक कहा जाए कि व्यंग के ट्रिपॉइड, ये तीन स्तंभ रहे हैं और उनका पूरा साहित्य मैंने पढ़ा, और अवचेतन में कहीं ना कहीं एक व्यंग के बीज अंकुरित होते रहे।
1: जी।
0: व्यंग देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं और बड़ा लोकप्रिय है, लोग उसे पढ़ते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। और मेरी व्यंग की 11 किताबें हैं जिनमें मेरे अनेक व्यंग संग्रहित, समय समय पर जो लिखता गया वो किताबों के रूप में आते चले गए एक के बाद एक।
1: कुछ महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र करना चाहेंगे आप?
0: हाँ जरूर, मैंने कुछ संपादन किया वैश्विक रूप से व्यंग संग्रहों का, मैंने वैश्विक लेखकों को एकत्रित किया। मेरा परिदृश्य, मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा वैश्विक हो गया है क्योंकि बच्चे मेरे सब विदेश में हैं तीनों, तो उस वजह से जैसे मैंने एक मिली भगत यानी सामूहिक व्यंग संग्रह बहुत से निकले हैं, भारत से भी कई निकले हैं और बड़े बड़े निकले हैं, लेकिन पहला वैश्विक संग्रह अगर मैं कहूँ तो मुझे बताने में गर्व होता है कि मिली भगत, जैसा नाम से ही है उस नाम से मैंने ये निकाला था। तो इसमें पूरे विश्व के कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से जो व्यंगकार उस समय व्यंग लिख रहे थे उनके व्यंग, दुबई से, वो ले करके और उनका एक सामूहिक संग्रह निकाला था। तो इसका नाम मिली भगत है और उसका संपादन मैंने किया था। जो आपने बात की कि मेरे व्यंग की किताबों की बात, तो राम भरोसे ये एक शीर्षक है, यानी जो भारतीय आम आदमी है वो किसी समय ऐसा लगता था कि जैसे वो राम भरोसे है, अंत्योदय जो गांधी के अंत्योदय का आदमी है उसको जब हमने राम भरोसे एक प्रतीकात्मक नाम दिया। व्यंग में एक लक्षणा शक्ति होती है, एक
1: मुश्किल भी होता है व्यंग्य लिखना, क्योंकि जो चुटीले व्यंग्य होते हैं, जब हरिशंकर परसाई के व्यंग्य को पढ़ने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप उस व्यंग्य को लिखकर गुदगुदा सकें या फिर करारा चोट कर सकें, दोनों विध। तो आपके लिए किस तरह की चुनौती रही?
0: व्यंग में मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। उलट बांसी में हम किसी चीज़ की अतिशयोक्ति से इस तरह से बताते हैं कि उसको इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बता देते हैं कि सामने वाला उसको संप्रेषित हो जाता है कि ये इसके विपरीत मैंने उसके हंसी उड़ा रहा है।
1: जी जी,
0: है ना। और एक प्रयोग होता है जिसमें हम किसी पे अवलंबन लेकर के, जैसे
1: किसी व्यक्ति विशेष को,
0: कोई हमने एक पात्र

0: अच्छा
1: चयन
0: अच्छा
1: किया। जैसे एक मेरा व्यंग है कि वोटिंग की लाइन में अर्जुन, तो अर्जुन को पात्र बना करके, जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, तो उस तरह का हम किंग कर्तव्य मूड हो जाते हैं कि हम इसको वोट दें कि उसको वोट दें। दोनों चेहरे तो एक से हैं,
0: जी जी
1: कई
0: जी
1: बार ये स्थितियां होती
0: बिल्कुल।
1: हैं। जी
0: तो हम किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं हो सकते हैं।
1: जी
0: हम
1: हाँ
0: इस समय जानना चाहते हैं कि आप गाने भी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो इस
1: जी
0: समय एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को। आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
1: चलिए, ममता जी आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सुना जाए,
0: सुनते हैं।
1: क्योंकि लोग कुछ भी कहते रहेंगे, हमें अपना एक दृष्टि और एक
0: लक्ष्य
1: एक ना लक्ष्य निर्धारित कर उस ओर
0: बिल्कुल
1: बढ़ना होता
0: जी,
1: है।
0: अमर प्रेम फिल्म का
1: ये
0: गाना
1: अमर
0: है,
1: फ्रेम फिल्म का गाना है,
0: सुन
1: किशोर कुमार की आवाज़ है,
0: जी।
1: आनंद बख्शी जी ने इसे बहुत अच्छे शब्द दिए हैं, तो क्यों ना हम ये गाना सुने।
0: सुनते हैं यही गीत।

0: विवेक रंजन जी, आपने लिखे भी हैं, नाटक लिखे हैं, व्यंग्य लिखे हैं और उपन्यास भी लिखा है, कहानियाँ भी, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन हमें बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की,
1: जी
0: एमटेक
1: हाँ
0: किया,
1: जी हाँ
0: बिजली विभाग में आप अभियंता के रूप में कार्यरत रहे,
1: जी हाँ
0: तो उसकी कहानी थोड़ी बताइए, कैसे वहाँ पहुँचे और कोई ख़ास याद वहाँ से जुड़ी हुई है जो शेयर
1: ममता जी,
0: करेंगे?
1: मैं इसके लिए कहूँगा कि आप बड़ी लकी हैं, क्योंकि आपकी अभिरुचि भी साहित्य में है और आप आकाशवाणी जैसे संस्थान में काम भी कर रहे
0: जी जी
1: हैं।
0: जी
1: मैं इतना लकी नहीं था,
0: विरोधाभास
1: विरोधाभास रहा मेरे जीवन में,
0: रहा है। जी
1: क्योंकि भारतीय स्थितियों में अनेक लेखकों के साथ मैं जानता हूँ
0: हाँ
1: कि जो आजीविका के लिए कुछ और हैं और जिनको रुचि कुछ और है। तो मैं एक साहित्यिक परिवार से आता हूँ। मंडला में मेरे दादाजी जो थे, उनके गीत प्रभात फेरियों में गाए जाते थे।
0: अच्छा, क्या
1: मेरे
0: बात है।
1: पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध जी, उनकी 40 विभिन्न किताबें हैं
0: जी
1: जो आध्यात्मिक प्रसंगों की रचनाएं हैं। उन्होंने भगवत गीता, रघुवंश, मेघदूत जैसी रचनाओं के हिंदी काव्यानुवाद किए और उनको अनुवाद पर सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला। तो मैं उससे था, मैंने जब हाई स्कूल में था तब तक हमारे यहाँ 11वीं कक्षा जो होती थी वो हायर सेकेंडरी होती थी। तो मैंने हायर सेकेंडरी तक मंडला की जिला पुस्तकालय और जो भी मंडला के जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे उनके सारे साहित्यिक उपन्यास चाट डाले
0: क्या बात
1: थे।
0: है, उस
1: तो
0: समय पढ़ने का एक
1: जी हाँ,
0: खास शौक
1: और
0: हुआ करता
1: पढ़ने का
0: था, दौर
1: शौक
0: था
1: था,
0: पढ़ाई
1: बहुत
0: का।
1: दौर था, क्योंकि मनोरंजन के और साधन नहीं थे।
0: जी
1: रेडियो, अखबार, अखबार के साहित्यिक कॉलम, वो लोग हम लोग पढ़ा करते थे। पत्रिकाएं आती थी तो हम भाई
0: जी
1: बहन दौड़ते थे जब भी कोई नया पत्रिका

0: का अंक
1: कि
0: आता
1: कौन
0: था,
1: पहले पढ़ेगा,
0: कौन पहले पढ़ेगा, तो ये जमाना था।
1: मनोहर श्याम जोशी का साहित्यिक ये साप्ताहिक हिंदुस्तान,
0: साप्ताहिक हिंदुस्तान,
1: तो इंतजार होता था धर्मयोग,
0: धर्मयोग और उससे भी पहले छोटे की बात करें तो पराग, नंदन, ये सब हम लोगों के बचपन में पढ़ पढ़ के वो संस्कार आए। तो हम बात कर रहे थे कि मंडला में जब हमारा साहित्यिक परिवार से था तो मैं पढ़ने में होशियार था ईश्वर की कृपा से। लक्ष्य निर्धारित हो तो हम सब अपने उसको उस दिशा में चल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना एक अच्छा व्यवसाय माना जाता
1: था। इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना आपने कैसे देखा, पहले ये बताइए कि कहाँ से बीज पड़ा, क्योंकि आप तो साहित्यिक रुचियों में जा
0: रुचि में था, बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन गणित में मैं हमेशा अव्वल रहा।
1: अव्वल थे।
0: जी हाँ, तो जब मेरा 11th हुआ और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो मैंने सलाह की, मैं मंडला जैसी छोटी जगह, मंडला एक आदिवासी प्रमुख जिला है और कान्हा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य अभयारण्य है उसके लिए जाना जाता है, तो वहाँ से था। तो मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने रायपुर से BE किया। फिर उसके बाद BE करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया MSCT भोपाल से, और इस प्रकार इंजीनियरिंग में मैं निष्णात हुआ और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया विद्युत मंडल में, तो मैं वहीं से चीफ इंजीनियर बन के रिटायर हुआ। और आजकल की तरह नहीं कि उस समय, तो आजकल तो जब तक बच्चों की कंपनियों का नाम याद करते हैं हम तब तक वो कंपनी बदल लेते हैं।
1: तब आपने एक जगह नौकरी ज्वाइन की तो बस वहीं पे स्थायी रूप से, लेकिन विद्युत मंडल में, विद्युत विभाग में अभी भी बहुत सारे शहरों में बिजली की कटौती होती है, महानगरों को छोड़ दें, मुंबई में तो बिजली जाना मतलब एक खबर बन जाती है, लेकिन अभी भी देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती होती है, तो ऐसी कभी कोई घटना की शिकायतों से भर दिया गया, कोई ऐसी घटना याद आती है?
0: आप सही कह रही हैं, लेकिन बिजली का परिदृश्य बहुत बदल चुका है ममता जी। मुझे ये बताने में खुशी है कि अब एक समय था कि जब उत्पादन कम था और मांग ज्यादा थी, खपत ज्यादा थी, अब हमारी मांग के अनुरूप काफी बिजली बन रही है और बहुत सारी उसमें नवाचार भी हुए हैं। अब अलग कंपनियां हैं जो विद्युत बनाती हैं। भारत में बिजली बनाने के, जो अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा मैं कि सबसे स्वच्छ बिजली बनती है पन बिजली, जहाँ पर पानी की जो स्थिति, जो ऊर्जा है उसको पानी को नीचे गिराकर गति ऊर्जा में बदला जाता है और उससे टरबाइन, मैंने बिजली बनाने का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि तांबे का कोई, जो हमने फेराडे लॉ पढ़ा है कि बिजली तभी बनती है जब कोई उनमें बल अंतर होता है, तो वो कॉपर का पूरा कॉइल जब घूमता है किसी मैग्नेट के अंदर तो बिजली बनती है। अब उसको घुमाने का तरीका क्या हो सकता है, तो या तो भाप की शक्ति से घुमाया जाता है तो वो थर्मल बिजली कहलाती है, उसमें कोयला जलाया जाता है तो प्रदूषण होता है, चिमनियों से धुआं निकलता है। दूसरा होता है पन बिजली, जिसमें कि स्वच्छ पानी गिरता है लेकिन उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बांध बनाया जाता है, पानी भरता है तो बहुत से गांव विस्थापित होते हैं, हर एक के अपनी समस्याएं भी हैं। और परमाणु बिजली होती है, तो मैं मंडला में पदस्थ था तो मंडला जिले में एक चुटका परमाणु परियोजना नर्मदा नदी के बांध के किनारे, जो बरगी बांध है उसके जल भराव के क्षेत्र के किनारे प्रस्तावित है, तो उसके प्रारंभिक सर्वे से लेकर के और उस जमीन का, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर डिपार्टमेंट है उनकी मांग ये थी कि हमें फाउंडेशन की दृष्टि से जमीन अच्छी चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए, पानी का केमिकल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए और वहाँ की आबादी कम होना चाहिए क्योंकि कभी कोई दुर्घटना हो, तो इन सारी दृष्टियों से जो मंडला का क्षेत्र था वो सही पाया गया और उसके सर्वे वगैरह मैंने किए। तो एक ये बात है, कच्चे माल के रूप में पानी और ज़मीन यही दिया जाना था, तो ये वो प्रस्तावित है, अभी जब भी बनेगा तो वो भी परमाणु बिजली घर भी मध्य प्रदेश को मिलेगा।
1: जी, बड़ी अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
0: ज़रूर।
1: कौन सा गाना?
0: एक बैजू बावरा 1952 में एक फिल्म आई थी ममता जी,
1: बहुत मशहूर,
0: मन तड़पत हरि दर्शन को, और इस गाने की खासियत पे हम चर्चा करना चाहेंगे।
1: जी जी।
0: एक धार्मिक सद्भाव की बात करें तो मोहम्मद रफी साहब ने इसको गाया था, नौशाद जी ने
1: संगीतबद्ध
0: किया था और शकील बदायूनी जी के शब्द हैं और गीत है मन तड़पत हरि दर्शन को। आज
1: तो
0: आज भी ये धुन पूरे हम सब के मंदिरों में बजती है और सब मानव के मन मंदिर में ये बजती रहे और सद्भाव हो देश में, ये मेरी कामना है।
1: क्या बात है, मेरे ख्याल से राग भैरवी पर आधारित थी।

0: ये जो गाना अभी हमने सुना, गाने के बाद हम चाहते हैं कि आप, चूंकि बिजली विभाग में कार्यरत रहे हैं
1: जी हाँ
0: और बिजली विभाग में जो कार्यरत होते हैं शिकायतें बहुत सारी मिलती हैं,
1: जी हाँ
0: तो कोई ऐसी यादगार बात बताना चाहेंगे? आपके पास शिकायतों की भरमार, आपके घर वालों ने भी कभी कोई शिकवा शिकायत की कि आप तो बिजली विभाग में काम करते हैं और हमारे घर पे बिजली गायब है,
1: ममता जी,
0: तो ऐसी कोई
1: बहुत
0: बात है
1: अच्छा
0: तो?
1: सवाल किया आपने और इस सवाल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: जी
1: मैं जब चीफ इंजीनियर था तो
0: हाँ
1: मैं अपने जो लाइन स्टाफ था उसको ये कहा करता था कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनको इस ढंग से मोटिवेट करता था। क्या होता है ममता जी कि किसी भी विभाग में जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी जवाबदारियां समझते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं जिनका सीधा सामना आम नागरिकों से होता है, हम कहीं बैंक जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो जो विंडो क्लर्क होता है, यदि उसका भाव आपसे बातचीत अच्छी है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें मानवीय गुण हैं, उसमें नैसर्गिक एक समस्या को निपटाने की भावना है, तो जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाइड होकर निकलता है। तो वही बिजली विभाग की बात है कि जो हमारे लाइनमैन हैं, जो हमारे लोगों को बिजली कनेक्शन चाहिए होता है, लोगों को अपना बिल पटाना होता है, लोगों को बिजली सही ढंग से, उनको अच्छी बिजली बराबर उसी उस पर वोल्टेज पे प्रॉपर मिलती
0: जी
1: रहे,
0: जी जी
1: ये उनकी, उसके लिए पैसे देने को आज लोग तैयार हैं, लेकिन कई बार हमारी सेवाएं अगर नहीं होती तो वो तकनीकी सीमाएं जहाँ पर हैं वहाँ हैं, लेकिन जहाँ मानवीय सीमाएं हैं, जो हमारे व्यवहारिक सीमाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा ज़्यादा काम करके थोड़ा सा वो कर, तो इसको मोटिवेट करना पड़ता है टीम भावना से। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में इसीलिए जाना भी जाता था
0: क्या बात है।
1: कि इस ढंग से हम लोगों को अपने मोटिवेट करते थे। और बिजली का परिदृश्य बहुत बदल गया, मेरी एक किताब भी है बिजली का बदलता परिदृश्य, क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय था अंधेरा कायम रहे, मैंने लोग बोले कि बहुत बार बार खुशियां मनाने का मौका मिलता है एमपीबी की तरफ से, क्यों? क्योंकि बोले जितने बार बिजली जाती है उतने बार जब बिजली आती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि वाह बिजली आ गई।
0: जी
1: तो हमने वो खुशी छीन ली है, अब लगातार मिलती है बिजली, लेकिन ये है कि कभी तकनीकी, क्योंकि आप जानती हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क है भारत का, तो इस तरह की समस्याएं आती
0: तो आपकी श्रीमती जी ने कभी कोई कंप्लेन की, शिकायत की कि नहीं?
1: हाँ।

0: श्रीमती जी तो शिकायतों का पुलिंदा होती ही हैं, क्योंकि
1: अच्छा
0: मैं दीपावली में भी जब हम लोग देर रात घर में पूजा कर पाते थे, क्योंकि हमें पूरे शहर की बिजली का देखना होता था
1: हाँ
0: कि बराबर बिजली सप्लाई हो गई, सबके घरों में पूजा अच्छे से हो जाए, प्रकाश रहे,
1: हाँ
0: कहीं कोई त्रुटि आए तो हम उसे तुरंत निराकरण कर सकें, तो मैं पावर हाउस से देर रात लौटता था, तब हम घर की पूजा करते थे।
1: जी जी
0: तो ये मेरी अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे किसी भी सिस्टम के पीछे जो पूरी एक टीम लगी होती है, जब यहाँ मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो यहाँ मैं पूरे सारे बिजली के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ,
1: बिल्कुल
0: वे सब पूरा, जैसे हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो जो हमारा पुलिस बल है, जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है,
1: जी
0: जब हम उनकी तरफ से बात करते हैं तो वो पूरी टीम लगी होती है, तब कहीं जा करके
1: बिल्कुल। और जब कभी जरा सी बिजली गुल होती है तो लोग शिकायतों की भरमार कर देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि उस विभाग में भी कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, और कहीं कोई त्रुटि हुई तो पूरी टीम काम में लग जाती है।
0: जी हाँ।
1: चलिए अब हम यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: तो हम सबको मुस्कुराहटें देना चाहते हैं,
1: जी
0: तो किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, ये
1: जी जी
0: 1959, ये मेरे
1: अनाड़ी फिल्म का गाना
0: अनाड़ी
1: है।
0: फिल्म का, ये मेरी जन्म वर्ष है 1959,
1: अच्छा,
0: 28 जुलाई
1: क्या बात है,
0: 59
1: तो सुनते हैं ये
0: जी
1: गाना।
0: जी हाँ।
2: किसी

0: अनाड़ी फिल्म का ये गाना था। विवेक जी, हमें बताइए कि आपने नाटक लिखा है, व्यंग्य लिखा है, अन्य विधाओं पर भी लिखा है, तो तीनों विधाओं में से आपके लिए कौन सी विधा में लिखना आसान होता है और कौन सी विधा बहुत मुश्किल लगती है, और कोई रचना प्रक्रिया बताना चाहते हैं वो भी बताइए
1: जरूर।
0: लिखते समय।
1: व्यंग मेरी मूल विधा है,
0: जी,
1: क्योंकि जब कहीं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम सीधे किसी को कटाक्ष नहीं कर पाते, सीधे बात नहीं कह पाते, किसी से गाली गलौज नहीं कर पाते, तो अपने मन का फ्रस्ट्रेशन मैं कागज़ों पर उतार देता हूँ और उसे मैं व्यंग में अभिव्यक्त करने में ज़्यादा सहज और सरल समझता हूँ। कई बार क्या होता है कि विचार अपने हिसाब से विधाएं चुन लेते हैं,
0: जी,
1: जो मैं कभी कभी कहता हूँ कि हर व्यक्ति कभी न कभी जीवन में कवि अवश्य होता है। युवा प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, मैं कभी जब बहुत सारे विचार मन में कौंधते हैं तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें संप्रेषित करने की जो विधा है वो कविता है। आप भी रचनाकार हैं और आप इसे समझ सकती हैं,
0: जी, जी।
1: क्योंकि कविता एक ऐसा शब्द चित्र बनाती है कि उसमें हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से रंग भर सकता है और वह चित्र मुखरित हो जाता है उसके परिवेश के अनुरूप। तो कविताएं भी मैं करता हूँ। मेरा 19वां काव्य संग्रह आक्रोश नाम से आया था
0: जी।
1: तो उसमें भी गिरजा कुमार माथुर जी आकाशवाणी में रहे हैं
0: जी, जी।
1: उनका एक वाक्य मुझे याद आता है, मैं कोट करना चाहूंगा।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं साहित्यकार विवेक रंजन श्रीवास्तव। आपसे बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान।
1: उन्होंने लिखा था कि मुझे युवाओं के आक्रोश भरे स्वर बड़े अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो मेरी किताब का शीर्षक ही है आक्रोश, और ये तार सप्तक अर्धशती समारोह भोपाल में हुआ था तो उसमें ये विमोचित हुआ था और ये मेरी पहली किताब थी
0: जी। अगर कुछ पंक्तियां याद हो तो आप सुनाना चाहें सुनाइए, या किसी अन्य कविता संग्रह से कोई कविता याद हो तो सुनाइए।
1: हाँ जरूर, मैं आक्रोश की पहली कविता सुना देता हूँ।
0: जी,
1: छोटी सी कविता है, शीर्षक है निर्वस्त्र। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में, और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। ये और बात है, ये और बात है कि तुम्हें नर्सिंग होम में ही झक सफ़ेद तौलिए में लपेट दिया गया, और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की गलियों में।
0: क्या बात है।
1: और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की धूल भरी सड़कों पर। जब भी तुम्हारा उससे सामना हुआ, तुम्हें छी गंदा लड़का कहकर उसका परिचय दिया गया। और आज जब उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, जब आज उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की एक छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, तो तुमने उसे अपना फटा पुराना पतलून देकर कपड़ों में भी कर दिया है एक बार फिर से निर्वस्त्र।
0: क्या बात है।
1: तो ये जनवादी नेचर की कविता थी।
0: हाँ, तो यहाँ पर कोई आपकी व्यंग्य रचना की कुछ लाइनें अगर याद है तो आप सुनाएं प्लीज।
1: जरूर ममता जी, मैं एक व्यंग का अंश छोटा सा सुनाना चाहूँगा। विसंगति ये है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो वो चल निकलता है, और उससे पहले जैसे निराला जी ने भी एक बार कहा था कि जब उनका नाम हो गया और रचनाएं छपने लगीं तो उन्होंने वो रचनाएं पुनः प्रेषित कर दी जो कभी वापस आ गई थी शुरू के दिनों की।
0: जी जी।
1: ये उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: तो उसी तरह का है कि विसंगति है नाम का महत्व, और तो ये जो रचना का शीर्षक है छींक का महाकाव्य, उसका छोटा सा अंश पढ़ता हूँ मैं। परम आदरणीय साहित्यकार श्री विभूति नारायण आगाद जी की 3 महीने से एक गंभीर कविता लिख रहे थे, पर शीर्षक ही नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन अचानक उन्हें छींक आई, आंखें। छींक इतनी जोरदार थी कि कागज पर स्याही का एक बिंदु बन गया और उसके नीचे अनजाने में ही चू जैसा कुछ लिख गया। आगाद जी उसे काटने ही वाले थे कि उनकी वरिष्ठता जाग उठी। उन्होंने सोचा, मैं आगाद हूँ, मेरे अवचेतन से

0: कोई भी शब्द साधारण कैसे हो सकता है। उन्होंने कागज पर तीन शब्द और जोड़ दिए, धूप की किरण और चू। उसी शाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक जी नई रचना लेने उनके पास पहुंचे और कागज पढ़ते ही उनकी आंखें चमक उठी। अद्भुत, इस चू में पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है। अगाध जी, आपने आधुनिक मनुष्य की छटपटाहट को पकड़ लिया है। अगाध जी ने मन ही मन सोचा कि यह तो सर्दी जुकाम का कमाल था, लेकिन गंभीरता चेहरे पर लाते हुए बोले, इसे पाने के लिए चेतना को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना पड़ा।
1: क्या बात है।
0: रचना मुख्य पृष्ठ पर छपी और फिर आलोचना जगत में तूफान मच गया। मार्क्सवादी आलोचक ने लिखा कि चूं शोषित वर्ग का विद्रोह है। मनोविश्लेषकों ने इसे दमित अहम की चीख बताया। अस्तित्ववादियों ने इसे जीवन की निस्सारता का सर्वोच्च उदाहरण बताया। एक युवा आलोचक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि कबीर के अनहद नाद के बाद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा नाद यही चूं नाद है। सोशल मीडिया पर चूं ट्रेंड करने लगा, लोग बिना समझे उसकी प्रशंसा करने लगे। तो आशा यह है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो उसकी रचनाएं चल निकलती हैं।
1: जी, क्या बात है। बढ़िया आपने रचना सुनाई, व्यंग्य रचना। और अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: ये सुना जाए कि जिंदगी प्यार का गीत है, सौतन से।
1: जी, सौतन फिल्म का गाना है। सुनते हैं यही गाना।

0: विवेक रंजन जी, व्यंग्य रचनाओं पर आपकी बात हुई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य, समकालीन साहित्य में, समाज में किस तरह के सकारात्मक बदलाव आप महसूस करते हैं?
1: बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ममता जी हो रहे हैं। स्त्री विमर्श पर आजकल बड़ा चर्चा है और साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा जो तीसरा जेंडर है उस पर भी बहुत सारी रचनाएं आ रही हैं
0: जी,
1: और कहानियों ने भी यथार्थवाद को पकड़ा है।
0: जी
1: कहानियाँ अब उस ढंग की नहीं रहीं कि जो एक आदर्श ही प्रस्तुत करती थीं, अब यथार्थ को लेकर के, यथार्थ नायक, जो जिस ढंग का जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, वो
0: जी
1: सारी चीज़ें कहानियों में देखने पढ़ने मिल
0: जी
1: रही हैं।
0: तो आपको क्या लगता है, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से
1: जी
0: बहुत सारे कथाकार जिनको नहीं जाना जाता है
1: जी
0: तो वो भी चर्चित हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया ने क्या सृजन कार्य को कम किया है या बढ़ावा दिया है? मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ना लिखना लोग कम कर रहे हैं या ज़्यादा, आपके नज़रिए से क्या है?
1: सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा हथियार हमें दिया है, क्योंकि पहले मुझे याद है, ममता जी आपको भी याद होगा, कि हम लोग जब रचनाएं किसी पत्रिका के लिए भेजा करते थे तो साथ में एक पता लिखा, टिकट लगा, लिफाफा रखना होता
0: जी
1: था।
0: जी
1: और मुझे याद है
0: वापस
1: कि तब हम राइस पेपर पे कार्बन लगा करके मैं लिखता था डॉट पेन
0: जी
1: से,
0: जी क्या बात है।
1: नीचे कांच रख करके। मैंने वो युग जिया है और

0: भेजी हैं रचनाएं उस ढंग से, और हम डालते थे डाक में वो लिफाफे, और फिर इंतजार करते थे
1: ये
0: कि अब
1: रचना
0: मैंने
1: करते।
0: रचना किया तो स्वीकृति आएगी या अस्वीकृति आएगी, और मेरा हाथ का पता लिखा लिफाफा लौट के आएगा। तो एक वो
1: बेसब्री
0: समय
1: से
0: था,
1: इंतजार
0: जी
1: होता
0: हाँ, ये
1: था।
0: एक समय था। और आज उसका नुकसान भी कहें और फायदा भी कहें, नुकसान ये है कि असंपादित रचनाएं बेहिसाब इधर मन में आया, और स्वसंपादन का युग है, हमने बटन दबाया और फेसबुक के जरिए मैंने ब्लॉगिंग 2005 से शुरू की थी।
1: जी जी
0: जब
1: जी
0: हिंदी ब्लॉगिंग शुरू हुई तो मेरे ब्लॉग्स बहुत पढ़े जाते थे और उन पे हिट्स मिलते थे। आर्कुट का ज़माना था, अब सब कुछ
1: जी
0: टर्न हो के,
1: बिल्कुल,
0: जी हाँ
1: एक समय था
0: एक
1: आर्कुट
0: समय
1: बहुत
0: था, जी
1: प्रचलित
0: हाँ,
1: हुआ था।
0: तो उसमें भी मैं था। फिर ब्लॉग में आया, फिर फेसबुक आई, फेसबुक में आ गया। तो इन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ये लाभ तो मिलता है कि रचनाकार के मन में जो भी भाव आए, आप सहमत होंगी कि वो लिखता है और उसको संपादक की कोई गरज नहीं होती, वो खुद लिख करके खुद उसे संप्रेषित कर देता है। लेकिन उसका जो साहित्य की दृष्टि से दुष्परिणाम की अगर बात करें तो असंपादित रचनाएं जा रही हैं।
1: जी
0: संपादन का एक अलग महत्व होता है। संपादक वह प्रहरी होता है जो पाठक और लेखक के बीच कहीं कोई एक ऐसा कर्टन लगाता है कि उसे बड़े तरीके से प्रस्तुत करता है,
1: एक पुल का काम
0: पुल
1: करते
0: का काम
1: हैं
0: करता है।
1: कि
0: जी हाँ,
1: अगर पुल अच्छा है, मजबूत है, तो निश्चित रूप से
0: नहीं उससे परिष्कार
1: आप
0: भी
1: पार
0: होता है,
1: जा सकते हैं।
0: परिष्कार भी होता है। मैं तो चूंकि घर में मैंने मेरी वाइफ मेरी पहली श्रोता है हमेशा, जब मैं लिखता हूँ तो उसे पकड़ के जबरदस्ती बिठा के सुनाता हूँ, और वो बहुत से परिष्कार रचना में होता ही है तो
1: तो क्या
0: बताते
1: प्रतिक्रिया देती हैं, अच्छी बुरी?
0: सुधार के बिंदु बताती है। वो भी एक साहित्यिक परिवार से है, उसके पिताजी ने, वो स्वतंत्र लेखिका भी है और
1: अच्छा।
0: महिला पत्रिकाओं में उसकी रचनाएं छपती हैं। तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पे क्या लिखा जाना चाहिए, क्या कौन सी बात ऐसी है जो संप्रेषणीय रचना की दृष्टि से हमने लिख ली लेकिन सामाजिकता के मर्यादा की दृष्टि से, क्योंकि साहित्य में स जुटा हुआ है, सबका हित।
1: जी
0: तो जो कुछ हम जब जब पुरस्कार मिल जाता है किसी को, कोई रचनाकार कुछ लिखता है, तो हम समाज के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हम रहें ना रहें साहित्य रहेगा,
1: जी बिल्कुल, किताब रहेगी
0: किताब
1: आपकी तो
0: रहेगी,
1: उसमें
0: रचनाएं
1: नाम
0: रहेंगी।
1: रहेगा।
0: तो ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की थी
1: हाँ।
0: तो उसमें ये कमी मुझे लगती है, लेकिन उसका लाभ यही है कि नंबर ऑफ लेखक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब विदेशियों की बात करें तो विदेशों में बहुत सारे बच्चे हमारे युवा आज गए, हर तीसरे घर से कोई ना कोई किसी विदेश में है, तो वो उनके साथ उनके मम्मी पापा गए। अब उनके मम्मी पापा वहाँ क्या काम करें, फ्री हैं, तो बहुत से जो महिलाएं हैं जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई, उन्होंने विदेश में लेखन को अपना अभिरुचि बनाई, और उसके कारण नए लेखक साहित्य जगत को मिले, और प्रवासी लेखकों का एक बड़ा संसार है ममता जी,
1: एक
0: और
1: उनकी
0: उनका,
1: बाकायदा दुनिया
0: हाँ
1: है,
0: उनका
1: और
0: एक
1: बहुत सारी पत्रिकाएं
0: अच्छा
1: हैं जिसके
0: ईश्वर की
1: माध्यम
0: कृपा
1: से।
0: से वहाँ पर रहते हुए संपन्नता के कारण वो उनकी किताबें फिर भारत से ही छपती हैं।
1: जी।
0: और अब किताबें भी आप ये देखिए कि फिजिकल किताबें, तो एक समय था कि हमारे पिताजी की किताबें 1,000 का संस्करण छपता था, आज आप भी लेखिका हैं आप जानती हैं कि 200 प्रतियां यदि एक संस्करण में छप रही हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ये परिवर्तन हुए हैं समाज
1: जी,
0: में।
1: प्रवासी साहित्य की बात आपने की, तो आप खुद विदेशों में गए
0: जी
1: हैं,
0: हाँ
1: आपने जिक्र भी किया कि
0: जी
1: यूएस और दुबई और कई जगह पर
0: जी
1: गए
0: जी जी
1: हैं, तो प्रवासी साहित्यकारों, उनकी दुनिया कैसी है,
0: उनकी
1: कि
0: दुनिया,
1: फायदे
0: जी हाँ
1: नुकसान?
0: उनकी दुनिया को हिंदी एक मंच पर जोड़ने का बड़ा काम कर रही है।
1: जी
0: मैं यूएस में गया था तो वहाँ काउंसलेट में मुझे बुलाया गया था, और वहाँ पर हिंदी दिवस का आयोजन था, तो मैंने लिखा कि रचना में कि हिंदी जो है वो हमें एक सूत्र में गर्व से जुड़ने का आपस में एक माध्यम बनती है। हिंदी एक फेविकोल की तरह काम करती है जो बहुत सारे भारतीय विदेश में हैं उनको एक मंच पर लाने का काम हिंदी का कर रही है।
1: जी
0: तो इस तरह से प्रवासी साहित्यकार बहुत सारा अच्छा लेखन कर रहे हैं
1: जी
0: और उनके संकलन भी आ रहे हैं
1: जी
0: और छप रहे हैं, चर्चा में हैं अभी। मैं
1: विवेक रंजन जी, आपने नाटक भी लिखे
0: जी हाँ
1: हैं, नाटक भी
0: जी
1: था, तो क्या होता है, आपकी रचना प्रक्रिया क्या होती है, उसके पात्र कहाँ से लाते हैं और संवाद कैसे गढ़ते हैं, उसके

0: बारे में बताइए।
1: मैं ममता जी सायास बहुत कम लिखता हूँ। सायास मतलब कोई ज़बरदस्ती कभी नहीं लिखता मैं, जो स्वतः कभी मैंने वैचारिक रूप से अंदर उथल पुथल जब विचारों की चलती रहती है तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परिपक्व होती रहती है। मेरी रचना प्रक्रिया यह है। और किसी दिन सुबह 4 बजे नींद खुलती है और फिर मैं सुबह के समय में 2-3 घंटे में रचना पूरी कर लेता हूँ। तो इस ढंग से मैंने कई नाटक लिखे और हर नाटक का, हर कविता का, हर व्यंग्य का मेरा एक भाव है। और मैं संदेश भी ये मित्रों को देना चाहता हूँ, रचनाकारों को, युवा रचनाकारों को, कि हम जो कुछ भी लिखें उसका एक हमारा मंतव्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना
0: कि लोग
1: चाहिए।
0: पढ़े।
1: हाँ, लोग पढ़ें और उससे कुछ सकारात्मकता समाज में जाए। केवल नाम की गरज से लिखना या किसी के कहने पर कुछ लिख देना वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है
0: जी,
1: जी।
0: तो क्या होता है, फिक्शन लिखना पसंद करते हैं या किसी यथार्थ परक
1: हाँ,
0: विषय पर?
1: मैं जैसे जब कोई व्यंग जब लिखता हूँ तो पीड़ा होती है किसी बात को लेकर के, बड़ा मन व्यथित होता है कि यार ये क्या विसंगति है, तो उसको फिर व्यंग में अभिव्यक्त कर देता हूँ। कोई दृश्य कभी बड़ा मनोरम लगता है, कोई बड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें बहुत से रंग भरने की कोशिश होती है, तो शब्द चित्र बनते हैं, तो मैं कविता लिख देता हूँ। जैसे मैंने अपनी जब कामवाली का जीवन देखा, मेरा कहना यह है ममता जी कि हर व्यक्ति अपने आप में एक उपन्यास है, चलता फिरता उपन्यास है। जो मेरे घर में काम करने वाली है उसकी पीड़ा जब मैंने पास से देखी, समझी कितनी मेहनत वो सुबह से कहाँ से आकर के करती है हमारे लिए, अपना सर्व मैंने फिजिकल मेहनत, जब हम विदेशों में जाते हैं देखते हैं कि खुद फिजिकल मेहनत करना पड़ती है, जो यहाँ पे हाउस हेल्प
0: जी
1: समय
0: जी
1: उपलब्ध कराती हैं
0: सहायिकाएं होती
1: जी,
0: हैं, सहायक
1: सहायिकाएँ
0: होते
1: होती
0: हैं,
1: हैं
0: आपको
1: जी
0: बहुत मदद मिलती
1: जी
0: है।
1: हाँ। तो फिर उस पर मैंने एक कहानी लिखी थी। तो
0: अच्छा
1: इस तरह से
0: जी।
1: मैंने कि उसके घर में जब खुशियाँ नहीं मिल रही थी उसे, उसका हस्बैंड उसको पिटाई करता था, तो उसने अपनी खुशियाँ हमारी खुशियों में ढूंढ ली। मेरे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो खुश होकर के वीडियो कॉल पे उनसे बात
0: बातें
1: करती,
0: करना।
1: तो ये एक कहानी को जन्म देता है। तो नाटक के लिए जब कोई, जैसे अब ये मेरे जो मुझे 2012 में भी साहित्य अकेडमी का नाटक के लिए ही पुरस्कार मिला था, तो वो हिंदोस्तान हमारा, तो उसमें जैसे DPS लखनऊ में किसी ने मुझसे फेसबुक के जरिए
0: जी
1: आमंत्रित किया कि हमारे स्कूल के लिए कोई नाटक लिखिए,
0: जी जी
1: तो मैंने फिर हिंदोस्तान हमारा देशभक्ति का एक नाटक बच्चों के लिए लिखा था। तो
0: जी
1: इस तरह से रचना प्रक्रिया चलती है।
0: तो ये तो हो गई। आपने कहा कि हम घर में सहायिका काम कर रही, वहां से उसके दर्द को साझा करते हैं,
1: जी
0: लेकिन एक कवि हृदय होता है, अमूमन कवियों की कविताओं की शुरुआत प्रेम कविता से होती है, और
1: जी
0: आपने अपने श्रीमती जी का जिक्र किया दो
1: जी
0: बार, तो उनके लिए भी कोई कविता लिखी है, अपनी पत्नी के लिए कोई कविता लिखी है तो
1: उनके लिए तो जरूर लिखी है, मगर वो
0: सुनाई
1: प्रेम पत्रों में बंद है। आज मैं आपको कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को सुनाना चाहता हूं
0: जी।
1: कि अच्छा लगता है। शीर्षक है, भाव काव्य के मंथन लौट करते घर लौटें तो अच्छा लगता है।
0: क्या बात है।
1: जब हम किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वहाँ से कुछ अगर दो पंक्तियाँ गुनगुनाते हुए लौटें तो अच्छा लगता है। ये भाव
0: जी
1: है ना, भाव काव्य के मंथन करते घर लौटें तो अच्छा लगता है, शब्द तुम्हारे कुछ जो लेकर घर लौटें तो अच्छा
0: अच्छा
1: लगता
0: लगता है, क्या बात है,
1: है। कौन किसे कुछ देता यूं ही, कौन किसे सुनता है, आज
0: वाह
1: छंद सुने और गाते गाते घर
0: वाह,
1: लौटें तो अच्छा
0: अच्छा
1: लगता।
0: लगता है।
1: मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है।
0: क्या बात है।
1: पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है। एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक। सोशल मीडिया पर ये देखने में मिलता है लाइक और डिसलाइक, मैंने बस एक
0: जी,
1: दूसरे पर
0: लाइक
1: लग
0: कमेंट।
1: लाइक कमेंट। एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक, गीत गजल सुन द्रवित हृदय जब रो देता तो अच्छा लगता है।
0: वाह
1: कविताओं की विषय वस्तु तो कवि को ही तय करनी है, शाश्वत भावों की अभिव्यक्ति सुन पर अच्छा
0: अच्छा
1: लगता
0: लगता
1: है।
0: है, वाह
1: रचना पढ़े बिना समझे बिन, नाम देख दे रहे बधाई, आलोचक पाठक की पाती पढ़कर लेकिन अच्छा
0: अच्छा
1: लगता है।
0: लगता है, वाह
1: कई डायरी

0: ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर।
1: क्या बात है।
0: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर, पढ़ने मिलता लिखा स्वयं का छपा हुआ जो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: बहुत पढ़ा और लिखा बहुत, कई जलसों में शिरकत की, बैठे घंटों श्रोता बनकर अब मंचों पर जब बैठो तो
1: अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया,
0: शब्द तुम्हारे कुछ लेकर के घर लौटो तो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। लता मंगेशकर का गाना है रेशमा और शेरा फिल्म से, तू चंदा मैं चांदनी।
1: बहुत ही बेहतरीन गाना है।

0: विवेक जी, ये तो कविता आपने सुनाई,
1: जी
0: अब नाटक पर फिर से आते हैं।
1: जी
0: नाटक जो लिखे हैं,
1: जी
0: तो ये इच्छा होती है कि नाटक रंगमंच पर आए, तो क्या
1: जी
0: आपके रंगमंच पर भी नाटक मंचित किए गए हैं?
1: जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि वो हिंदोस्तान हमारा के कुछ नाटक बाल नाटक थे, तो वो DPS स्कूल लखनऊ में, ज्ञानदीप मंडला में
0: जी
1: मंचित हुए, और स्कूलों में कई जगह वो बाल नाटक मंचित हुए। इसी तरह से जो अभी जलनाद है वो अमेरिका

0: में एक
1: मंचन
0: जगह,
1: हुआ।
0: हाँ, मैं मंचन हो रहा है उसके अंशों का,
1: हाँ
0: और एनएसडी को भी भेजा गया है ये नाटक। तो देखिए, जैसा बोला जाता है ना कि गीतों को छू ले कोई, मैंने अगर कोई गीत गा ले तो गीत अमर हो जाता है,
1: होठों से छू लो तुम मेरा गीत
0: और
1: अमर
0: गीत
1: कर
0: अमर कर
1: दो।
0: दो। और उसी तरह से नाटक के मामले में कि नाटक दृश्य और श्रव्य विधा है
1: जी
0: और उसकी संप्रेषण क्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी कहानी को जब हम पढ़ेंगे तब हमारे मन में हमारे परिवेश के हिसाब से चित्र बनेंगे, लेकिन नाटक जब हम देखते हैं
1: जी
0: तो उसका सीधा असर, इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर दोनों दृष्टि से पड़ता है, संवाद डिलीवरी से भी और जो कुछ हम आँखों से देखते हैं।
1: जी
0: तो नाटक का महत्व ही उससे है। और जिस ढंग से हवा महल में जो झलकियाँ आप लोग सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को, तो उसमें आवाज़ की ही नाटकीयता से सारे भाव प्रेषित होते हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: मेरी झलकियाँ, मैं कामना करता हूँ कि विविध भारती से भी आए,
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: इस ढंग का कुछ प्रयास मेरा है।
1: जी, ज़रूर आपकी कलम में ताकत है तो फिर ये ज़रूर होगा। हमें बताइए कि आपके लेखन को किन साहित्यकारों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? मतलब आपने पढ़ा है बचपन से इतने
0: जी
1: सारे साहित्यकारों को,
0: जी
1: तो वो किन साहित्यकारों से आप प्रभावित रहे?
0: मूलतः मैं परसाई जी से प्रभावित हूँ, अपने आप को परसाई जी से प्रभावित मानता हूँ, क्योंकि व्यंग की जो प्रारंभिक मेरी भावनाएं जागी वो उनके स्तंभों को पढ़ने से हुई, और फिर आगे जैसे जैसे मैं और गहराई से पढ़ता गया तो निश्चित ही जोशी जी ने, शरद जोशी जी के व्यंग, त्यागी जी के व्यंग, उनसे भी मैं प्रभावित रहा हूँ।
1: जी, और इन दिनों क्या लिख रहे हैं आप?
0: इन दिनों मैं कहानी पर काम कर रहा हूँ और ललित निबंध पर काम कर रहा हूँ,
1: जी
0: क्योंकि ललित निबंध में साहित्य अमृत एक पत्रिका है, तो उसमें बड़े अच्छे ढंग से ललित निबंध बहुत पढ़ने मिलते थे। ललित निबंध विधा कम लिखी जा रही है, संस्मरण विधा कम लिखी जा रही है,
1: विस्मृत हो रही है एक तरह
0: विस्मृत
1: से
0: हो रहे,
1: आजकल।
0: रिपोर्टाज बहुत कम लिखे जा रहे हैं। तो मेरा यह है कि चूंकि बहुआयामी बहुविध व्यक्तित्व अपना मेरा ऐसा कुछ बन गया है, तो पहले उस विधा की रचनाएं बहुत सारी पढ़ता हूँ, श्रेष्ठ रचनाएं पढ़ता हूँ, और फिर वो ईश्वर ने भाव दिए हैं, शब्द दिए हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता दी है, तो उसमें अभिव्यक्त करता हूँ।
1: जी, विवेक रंजन जी, बड़ी ही रोचक बातें आपने कहीं साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। विविध भारती परिवार की ओर से और श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए यहाँ, नमस्कार।
0: धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती परिवार को कि ये आज आपने मुझे अवसर दिया, और तमाम श्रोताओं को कि आपने मुझे सुना और आप मुझे पसंद किया या नहीं किया, ये तो आपके पत्रों से मालूम होगा। विविध भारती को आपके फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार रहेगा।
1: जी, बहुत बहुत
0: नमस्कार,
1: शुक्रिया,
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: थैंक यू ममता जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जुबैर खान। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: शाम के 5 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपये से अधिक है।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी।
2: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवां डांगो अपोसी 4थी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 यानी NIPU 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी। NIP 2012 की तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुँच प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत के भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। महाराष्ट्र में मुंबई के नहवा शेवा और संताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र से खेपों को रवाना किया गया। चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अंतर्गत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में शौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में जारी संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। कल रात पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0

0: गैर फिल्मी भजन अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।

बजरंगा का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:30 और 40 सेकंड हुए हैं। समय है कार्यक्रम युवा मंच का।

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों, स्वागत आप सबका और हमारे तमाम श्रोताओं का भी जो हम संग जुड़े हैं, सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। जी हाँ, आप पहुंचे हैं हम स्टूडियो में और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। उसके बाद हम आते हैं अपने सेगमेंट पे। जी हाँ, हर रोज़ की तरह अलग अलग सेगमेंट के साथ हम आते हैं, साथ ही जानकारियों के साथ करवाते हैं आपका मनोरंजन भी। तो चलिए, कार्यक्रम का अब आगाज़ हम करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। उसके बाद हम आते हैं अपने सेगमेंट के साथ। तो बता दें आपको कि आज का हमारा सेगमेंट है स्पोर्ट्स वीट्स। तो चलिए सुनते हैं हम और आप मिलकर ये प्यारा सा गीत।

0: आज के सेगमेंट स्पोर्ट्स बीट्स में हम लेकर आए हैं देश और दुनिया के खेल जगत की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के खेल समाचारों की। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की। सबसे पहले क्रिकेट की बात की जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में खेले गए मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन तालमेल दिखाया। कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जबकि मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान दिया। गेंदबाजी में भारतीय तेज गेंदबाजों और स्पिनरों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। दूसरी ओर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और मजबूत की है। युवा महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन यह साबित कर रहा है कि भारत में महिला क्रिकेट लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
1: ब्रैडली,

0: Lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry! Limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: कार्यक्रम युवा मंच में एक बार फिर से स्वागत हमारे तमाम श्रोताओं का और युवा दोस्तों का भी। तो अब बात करते हैं हम बैडमिंटन की। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, एसएच प्रणय और कई युवा खिलाड़ी विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ भी जमीनी स्तर पर नई प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत बैडमिंटन की महाशक्ति बन सकता है। अब बात की जाए हॉकी की, तो हॉकी भारत का गौरवशाली खेल रहा है। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटी हुई हैं। फिटनेस, गति और आधुनिक रणनीति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जूनियर खिलाड़ियों को भी वरिष्ठ टीम के साथ अभ्यास का अवसर मिल रहा है, जिससे भविष्य के लिए मजबूत टीम तैयार की जा सकती है। अब बात करते हैं फुटबॉल की। जी हाँ युवा दोस्तों, भारतीय फुटबॉल में भी लगातार सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इंडियन सुपर लीग और विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। देश के कई राज्यों में फुटबॉल अकादमियां स्थापित की जा रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं युवा मंच, और आज का हमारा सेगमेंट है स्पोर्ट्स वीट्स। जी हाँ, खेल जगत की बातें आज हो रही हैं, तो अब हम बात करते हैं एथलेटिक्स की। जी हाँ, एथलेटिक्स में भारत के युवा खिलाड़ी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। भाला फेंक, लंबी कूद, दौड़, ऊंची कूद और रेस वॉक जैसी स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों में खिलाड़ियों की फिटनेस, पोषण और मानसिक मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब बात की जाए शतरंज की, तो भारत शतरंज की दुनिया में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। युवा ग्रैंड मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में शतरंज के प्रति युवाओं का बढ़ता रुझान भविष्य के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। अब बात की जाए अन्य खेलों की, थी कबड्डी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी जैसे खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से देश भर में नई खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की तैयारियाँ तेज हो गई हैं। भारतीय दल विभिन्न खेलों में पदक जीतने के लक्ष्य के साथ अभ्यास कर रहा है। खेल विशेषज्ञों का विश्वास है कि इस बार भी भारत पदक तालिका में मजबूत स्थान हासिल करेगा। युवा दोस्तों, खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का सबसे सशक्त साधन भी है। खेल हमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, आत्मविश्वास और संघर्ष करना सिखाते हैं। यदि आप प्रतिदिन कुछ समय किसी भी खेल को देते हैं तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर बनते हैं। याद रखिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैदान में बहाया गया पसीना ही सफलता का सबसे बड़ा पुरस्कार बनता है। जी हाँ, तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते हम आपको बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला सुरेंद्र कपूर से। अब चलते चलते सुनवाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ। शाम 6:30 पर किसान बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम आप सुनेंगे मुझ कराई दिया। इसमें बातचीत का विषय रहेगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम खेती बाड़ी। आज इसमें बातचीत की जाएगी नर्सरी प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण, साथ ही होंगे मंडी भाव मौसम की जानकारी, भेंट वार्ता और आपके मनोरंजन के लिए कुछ लोकगीत। रात्रि 8:00 समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा का उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण रिले किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार प्रसारित किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा गीतकार SH बिहारी के लिखे कुछ गीत। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। उप शास्त्रीय संगीत का लुत्फ उठाइएगा रात्रि 10:00 और 10:30 पर चित्रपट संगीत, पुरानी फिल्मों से गीत प्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News 8:09। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। आप प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह सुहानी कार्यक्रम में जानकारियों के साथ होगा संगम मनोरंजन का भी सुबह 7:10 पर। महिलाओं का कार्यक्रम सुनो सखी का प्रसारण समय रहेगा दिन में 12:30 पर। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 और 57 सेकंड हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में लगभग 19 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नगर निगम कार्यालय भवन का शिलान्यास और छोटे व्यापारियों व महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए निर्मित दुकानों व ग्रामीण हाट के उद्घाटन किए। बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी भूमि पर कई वर्षों पहले बसे गरीब व भूमिहीन लोगों के मकानों को रियायत प्रदान करने के लिए एक नीति बनाने की घोषणा की ताकि उन्हें राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में 630 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज अगस्त महीने में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में विकास कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जा रही है।
1: हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास करने की कमी नहीं आ रही। ये जो बस स्टैंड के सामने आपकी नई मार्केट बनी है महाराणा प्रताप की, और हमीरपुर में सभी सड़कों को चौड़ा करने के लिए डबल लेन करने के लिए हमने पैसे उपलब्ध करवाए। आज सबसे ज्यादा डबल लेन सारी रोड जो है हमीरपुर जिला में चौड़ी हो चुकी है, और अभी चार ऑफिस में यहाँ आ चुका हूँ। और निरंतर देखिए, हमीरपुर बस स्टैंड का शिलान्यास 2007 में हुआ। 20 साल पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पैसा हमीरपुर के बस स्टैंड के लिए नहीं दिया। जो हमीरपुर का बस स्टैंड बनने जा रहा है, इस पर तकरीबन 130 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। अगले अक्टूबर तक वो बनकर भी तैयार हो जाएगा।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि औषधीय पौधों के वैज्ञानिक उपयोग से हिमाचल प्रदेश में बागवानी केंद्र के साथ साथ हरित उद्यमिता की राजधानी बनने की क्षमता है। राज्यपाल आज प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र समूह द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औषधीय जड़ी बूटियों, सुगंधित पौधों और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों का समृद्ध भंडार है। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि वैज्ञानिक खेती, मूल्य संवर्धन और नवाचार के माध्यम से इस भंडार का उपयोग कर हजारों युवाओं के लिए सतत आजीविका के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे की बुराई के प्रति सचेत रहने का आह्वान करते हुए कहा कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाज के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल करार दिया है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, कुशासन और प्रशासनिक विफलताओं का नया रिकॉर्ड बनाकर इतिहास में दर्ज होगी। विक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार बेहतर शासन के दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय स्वीकृत नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह राशि वापस कर प्रदेश के हजारों युवाओं के रोजगार अवसर छीन लिए। विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में खनन माफिया सक्रिय है और सरकार से जुड़े लोग खनन से लाभ उठा रहे हैं।
2: ये सरकार केवल और केवल मंत्रिमंडल में ही विफल नहीं हुई है, पिछले 4 वर्षों में एक निराशा का वातावरण रहा है, एक हताशा का वातावरण रहा है, आम जनमानस दुखी है। केंद्र सरकार द्वारा जहां जहां मदद करने की कोशिश की जा रही है, वहां वहां केंद्र सरकार के कामों को रोका जा रहा है। प्रदेश की सरकार में बड़े बड़े लोग माइनिंग में इन्वॉल्व हैं, जगह जगह के ऊपर जहां जहां हिमाचल प्रदेश के अंदर माइनिंग होती है, वहां वहां कांग्रेस के सरगने, कांग्रेस के नेता उन माइनिंग के लोगों के साथ मिले हुए हैं।
0: ऊना जिला ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण व मकानों की गणना का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर प्रदेश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। उपायुक्त जतिन लाल ने इस उपलब्धि पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 चार्ज अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि जनगणना राष्ट्र निर्माण की आधारभूत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से विकास योजनाओं के निर्माण व प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध होते हैं। केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। सोलन जिला में करीब 2500 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है। आत्मा परियोजना के निदेशक हीरा लाल आजाद ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार क्लस्टर बनाकर किसानों को जोड़ा जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन

0: आपके रेडियो दोस्त रेनू मनकोट या तो कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं नूरी फिल्म के इस गीत के साथ जिसे गाया है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने। और संगीत है खयाम का।
1: दिल भर जानिया।
0: बोल हैं जान निसार अख्तर और नक्श लियालपुरी के।

0: सरगम फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। काम चोर इस फिल्म का गीत अब हम शामिल कर रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, और आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।
1: तुझ संग
0: संगीत दिया है राजेश रोशन ने और बोल हैं इंदिवर के।